0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है, अच्छा।

0: क्या ये सब?
1: टॉम,
2: स्टॉप। आई थिंक ही डिजर्व्स अ मोर बेटर।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आप मेरी लड़ी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: आसान ही आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना।
2: जब मोहब्बत इबादत बन जाए तो कुर्बानी कैसी। प्यार वो नहीं जो सिर्फ जीने दे, प्यार तो वो है जो खुद को मिटाकर भी दूसरे को जीने का हौसला दे।
1: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: राहुल जैकर, एक मशहूर सिंगर जिसका सुर दुनिया के लिए एक जादू था।
1: सुन रहा है
2: के अंदर का दुख एक ऐसा राग था जो सिर्फ वो समझता था। और फिर एक दिन, एक बारिश भरी रात में, उसकी आवाज से ज्यादा खूबसूरत एक आवाज उसके दिल तक पहुंची। आरोही।
3: आरोही,
4: क्या?
3: कुछ नहीं, बस यूं ही।
1: हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
2: एक सिंपल सी लड़की जो सिर्फ गाना चाहती थी, राहुल ने उसके सपनों को पंख दिए, उसे बुलंदियों तक ले गया।
4: कितना अच्छा गाते हो तुम।
3: मैडम, ट्रेनिंग मेरी नहीं, आपकी है, चलो गाओ।
5: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: पर खुद वो प्यार जो उसके जीने की वजह बना, वही उसके होने का बोझ बन गया।
6: क्यों आए तुम? दूरी रहना था ना।
7: अरे यही तो बात है, जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था। इसके पहले कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, जस्ट गो अवे।
1: भुला देना मुझे, है अलविदा तुझे।
2: आरोही का प्यार उसके लिए दुआ था, पर कभी कभी दुआएं भी किस्मत से नहीं जीत सकती। एक प्रेम कहानी जो अधूरी होकर भी पूरी थी, एक आशिकी जो मरने के बाद भी जिंदा थी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: यार एक बात बता, पानी पर GST लग गया है क्या?
2: अरे नहीं यार, पानी तो बिल्कुल फ्री है।
1: तो फिर भी कोई रख क्यों नहीं रहा? अरे भाई, जब ना कोई टैक्स है ना कोई डिलीवरी चार्ज है, तो एक प्याला पानी रखने में कैसा एतराज है?
2: इससे पहले कि ये बेजुबान मोहल्ले का RTI दाखिल करें कि पानी गया कहाँ, उससे पहले एक बर्तन भर दीजिए और बेजुबानों की जान बचा लीजिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: ईशा,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ। जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो, इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल।
0: वाह वाह,
1: अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ लस्सी भी बनाता हूँ।
0: जैसी तेरी टूटी फूटी शायरी है ना, वैसी तेरी लस्सी भी होगी। अपनी लस्सी तो ही पी, मैं आता हूँ।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: मुझे वीराना पसंद है, समझे।
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, श्राप बनकर नेटफ्लिक्स के हॉरर सेक्शन की तरह हमेशा जिंदा रहती हैं। एक शापित हवेली, एक राज जो मौत से भी ज्यादा भयंकर था, और एक जैस्मिन जो सिर्फ नाम से मासूम थी। एक दिन उसने एक तांत्रिक से मेकओवर पैकेज ले लिया और बस अब वो सिर्फ लड़की नहीं डायन बन चुकी थी। पर हर बुराई का अंत होता है, पर इस बार श्राप लाइफ टाइम वारंटी के साथ आया था। सालों बाद हवेली एक बार फिर जाग गई और इस बार नए मेहमान की तलाश थी।
3: तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना।
2: वीराना सिर्फ एक जगह नहीं, एक हॉरर फिल्म का एक्सटेंडेड वर्जन है। जो आया वो गया नहीं, और जो गया उसका लास्ट सीन अब तक एक्टिव है। अगर कभी किसी वीरान हवेली में फ्री स्टे मिले तो समझ लो पेमेंट तुमसे नहीं, तुम पर होने वाला है।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: हर दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं होता, कुछ एल्युमिनियम के भी होते हैं, और कुछ के पीछे तो मौत लिखी होती है। राहुल और निधि नए घर की तलाश में, पर जो मिला वो एक मनहूस कहानी थी। एक हवेली जो सदियों से बंद थी और एक दरवाजा जो सालों से बंद था, शायद जाम हो गया था। जब उन्होंने उस दरवाजे को छुआ तो पूरी हवेली जाग गई। दीवारों से सांसें सुनाई देने लगी, दरी पर पैरों के निशान उभरने लगे, और फिर वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर तुमने उन्हें खोला तो हो सकता है अंदर वाले तुम्हें बाहर ही ना आने दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: अगर वो बोल सकती तो शायद कहती, थोड़ा पानी मिलेगा। मगर वो बोलते नहीं, बस लाचार भरी नजरों से हमारी ओर देखते हैं। तो आइए उनकी प्यास हमारी इंसानियत से मिटाएं। गर्मी में बाहर पानी रखिए, क्योंकि थोड़ा पानी बहुत सुकून देता है।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: ऐसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: शुरू हो जा।
1: तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: तुम्हारी हरकतें जानता होगा।
1: अब पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोए हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: आप तू बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।
1: अरे सुनो,

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: सुनो जरा, चलो करें कुछ मजा।
2: नया घर लेना मतलब नए सपने, नई उम्मीदें और कभी कभी नए मेहमान। एक नया घर लेना लाइफ का बड़ा अचीवमेंट होता है। पर जब घर के साथ एक भूत मुफ्त मिले तो
3: भूतनाथ नहीं, ये मेरा घर है, चलो निकलो यहाँ से।
2: शर्मा फैमिली गोवा शिफ्ट होती है और एक हेरिटेज लुक वाला बंगलो रेंट करती है, नाथ विला। भाई नाम ही इतना क्लासी है तो भूत भी वीआईपी होगा। मोहल्ले वाले वॉर्न करते हैं, भाई हॉन्टेड है, पर इंडियन पेरेंट्स को सिर्फ 2 महीने का रेंट दिख रहा होता है। घर में अजीब चीजें होने लगती है, टीवी खुद चलना बंद, फ्रिज से आइसक्रीम गायब, मतलब भाई भूत भी फुल सेवेज मूड में है। पर छोटा बंकू भूत से दोस्ती कर लेता है। भूतनाथ अंकल भी सोच रहे होंगे, अरे यार ये डर क्यों नहीं रहा,
4: कान्हा भूत हूँ।
5: कान्हा भूत नहीं होते? अच्छा, तो तुम यहाँ पर रहने आए हो?
2: धीरे धीरे पता लगता है कि नाथ साहब ही इस घर के असली मालिक हैं और यहीं अटक गए हैं। ईएमआई का लोन चुकाना पड़ा होता तो पहले ही स्वर्ग सिधार जाते। अब बंकू की मिशन मोड एंट्री होती है, भूत को फ्री करना है। एक तरफ स्कूल का होमवर्क और दूसरी तरफ भूत की मोक्ष यात्रा। बचपन काफी स्ट्रेस में चल रहा था, आखिरकार नाथ अंकल स्वर्ग एक्सप्रेस पकड़ के निकल लेते हैं और घर अब हॉन्टेड नहीं रहा। लेकिन शर्मा जी की टेंशन खत्म नहीं हुई, अब उनको नया टेनेंट ढूंढना है। घर सस्ता मिले तो एक बार चेक कर लो, कहीं घर के साथ भूत मुफ्त ना मिल रहा हो, क्योंकि हर भूत भूतनाथ नहीं होता।
1: मेरे

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
2: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
3: रेडियो महारानी 89.6 एफएम कहता है, गर्मी से लड़ें या ना लड़ें, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

0: के आगे गराज, गराज के ये मैकेनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसने रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।
0: इसके आगे मैं नहीं बता सकती, इनसे ही पूछ लो।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: दोस्ती, प्यार, परिवार और एक डॉग जो लव स्टोरी का असली हीरो निकला। प्रेम एक बिंदास देवर, निशा एक शरारती साली साहिबा, दोनों की नोक झोंक मस्ती और आंखों ही आंखों में रोमांस चल रहा था।
2: पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है।
1: पर ये कोई ऑर्डिनरी लव स्टोरी नहीं थी, ये थी संस्कार सिनेमैटिक यूनिवर्स की ओजी फिल्म।
3: हम आपके हैं कौन?
2: ये मौसम का जादू है मितवा।
1: पिक्चर से लंबे गाने, दिल से दोस्ती, भाभी तेरा देवर दीवाना और प्रेम निशा का पहला पहला प्यार, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। पूजा, जो प्रेम के भाई राजेश की पत्नी थी, एक ड्रामेटिक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है और फिर होता है संस्कार वर्सेस प्यार का महायुद्ध।
2: मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है।
1: लेकिन राज रे की फिल्म में ड्रामा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? राजेश के लिए निशा का रिश्ता फिक्स होने वाला था, पर प्रेम का प्यार और टफी, हाँ वही लेजेंडरी डॉगी, हीरो बनकर बीच में आ जाते हैं। अब सवाल ये था, प्रेम सेक्रिफाइस करेगा या प्यार की होगी जीत? फैमिली ड्यूटी स्ट्रॉन्ग निकलेगी या दिल की सुननी पड़ेगी?
2: आपके
1: प्यार किया तो डरना क्या? एंड एट लास्ट निशा और प्रेम का प्यार जीत जाता है और फिल्म की होती है हैप्पी एंडिंग।

0: आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा हेलमेट ही मांग लिया।
1: अब हम स्कूटी कैसे चलाएंगे।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो। स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: अनजाने अजनबी।
2: शादी सिर्फ शादी नहीं होती, थोड़ी सी शर्माहट, थोड़ी सी मिठाई और
3: हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार।
2: एक तरफ प्रेम, जो सीधा साधा लड़का जो शादी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, और दूसरी तरफ हमारी पूनम, जो एक शर्मीली और सुशील लड़की जो प्यार को एक समर्पण समझती है।
4: जी जी, क्या कह के उनको बुलाओगी, दूल्हा बन के जो आएगी।
2: पहली नजर में शर्माना, घर वालों का आशीर्वाद और विवाह फिक्स।
5: सहरा सजा के घोड़ी चढ़ के जब तुम आओगे तो जानती हो क्या होगा?
6: क्या?
5: हमारे गली के कई घरों में चूल्हों पे रोटियां जल जाएंगी।
2: राशनी की पिक्चर में ड्रामा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लड़की वाले नर्वस, लड़के वाले ओवर एक्साइटेड, पर जब किस्मत ने कठिन इम्तिहान दिया तब प्रेम ने दिखाया कि असली प्यार सिर्फ सुंदरता से नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभाने से होता है।
1: तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है।
2: और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग होती है विवाह मूवी की, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ शादी के मंडप तक ही नहीं, जिंदगी भर साथ चलने का वादा होता है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: अगर वो बोल सकती तो शायद कहती, थोड़ा पानी मिलेगा, मगर वो बोलते नहीं, बस लाचार भरी नजरों से हमारी ओर देखते हैं। तो आइए उनकी प्यास हमारी इंसानियत से मिटाएं। गर्मी में बाहर पानी रखिए, क्योंकि थोड़ा पानी बहुत सुकून देता है।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
2: प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, कभी कभी इंतजार का नाम भी होता है। सिमरन, सपनों में जीने वाली लड़की।
3: मेरे ख्वाबों में जो आए।
2: राज, मस्ती, मजाक और दिल से जीने वाला आशिक।
4: रुक जाओ दिल दीवाने,
2: यूरोप के एक सफर में मिले, टकराए, लड़ते झगड़ते दोस्ती हो गई, पर प्यार समझने में देर लग गई।
5: कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: जब सिमरन एक तय की गई शादी के लिए इंडिया गई, राज ने फैसला किया प्यार को जीतना है, पर परिवार के आशीर्वाद के बिना नहीं। एक तरफ संस्कार, दूसरी तरफ सच्चा प्यार, एक तरफ मजबूरी तो दूसरी तरफ जुनून। राज ने घर से रिश्ता जोड़ा, सबका दिल जीता, लेकिन बाऊजी का पत्थर दिल पिघलाना अभी बाकी था। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया।
6: जा सिमरन, जा, जा जीने अपनी जिंदगी।
2: इसलिए कहते हैं

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
4: एक वार बोलिया पछी मारा मित्रों, आ मित्रों कदी ना फरे के हालो ने

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: कुछ घर सिर्फ घर नहीं होते, कुछ दीवारें सिर्फ दीवारी नहीं होती, और कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। वो इंतजार करती हैं वक्त का। एक कहानी मोहब्बत, धोखा और एक आत्मा का इंतकाम। ये कहानी है 1920 की।
2: तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं।
1: अर्जुन सिंह राठौड़ एक आर्किटेक्ट जिसने फैमिली के खिलाफ जाकर लीसा से शादी की और प्यार उन्हें एक वीरान हवेली तक ले आया।
3: इतने खूबसूरत घर को कोई तोड़ना क्यों चाहता है?
1: जो सिर्फ एक हवेली नहीं, एक मनहूस कहानी का गवाह भी थी। उस हवेली में आते ही अजीब हादसे शुरू होने लगे।
4: कौन है?
1: लीसा को अजनबी चेहरे दिखने लगे। हवेली में अजीब आवाजें आने लगी। एक भयानक साया उसके आसपास मंडराने लगा।
4: इस घर में कुछ है, कुछ है जिसे मैं छू नहीं सकती पर महसूस जरूर कर सकती हूँ।
1: और फिर लीसा को एक तस्वीर मिलती है गायत्री की, और उसके बाद आता है एक सच। ये कहानी सिर्फ प्यार नहीं, इंतकाम की भी थी।
3: लीसा और कोई नहीं, गायत्री ही है बेटा। वो दूसरा जन्म लेकर पालनपुर आ पहुँची है।
1: वहाँ के प्रीस्ट ने चेतावनी भी दी थी कि मोहन कांत की आत्मा वापस आई है लीसा के रूप में। और फिर आती है अमावस की रात। लीसा का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। पर आखिर जीता सिर्फ एक ही, सच्चा प्यार। अर्जुन ने लीसा को आजाद किया और वो आत्मा हमेशा के लिए हवेली की दीवारों में समा गई। मोहब्बत हो या हवेली, पुरानी हो तो संभाल के रखना। और हाँ, अगले जन्म के वादे सोच समझ के करना। क्या पता कौन सीरियस

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: जीवन का असल सुख किसी और के जीने की वजह बन जाना। सूरज की गर्मी तेज है, हर तरफ तपती जमीन है, लेकिन सोचिए कहीं कोई छोटी सी जान एक बूंद पानी के इंतजार में है। बस एक आदत बना लो, एक छोटी सी प्याली पानी भरकर किसी सुरक्षित जगह रख दो। छोटी सी मेहनत लेकिन किसी के लिए बड़ी राहत। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, उनके लिए भी सोचिए जो बोल नहीं सकते।

0: शुरू हो जा।
1: तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अबे पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोया हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: आप तो बोलता रहे भाई, हम चलते हैं।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: इंसानियत सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, हर जीव के लिए है। क्या कभी सोचा है कि जो पंछी आपकी छत पर आते हैं वे सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बल्कि किसी उम्मीद से आते हैं। गर्मी उनके लिए भी उतनी ही कठिन है जितनी हमारे लिए। एक छोटी सी कोशिश, एक मटका या एक बोल पानी भर कर रखिए, शायद आपकी एक कटोरी पानी से किसी की प्यास बुझ सके।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: देखो, बॉयफ्रेंड्स ना फिल्मों की तरह होते हैं, कुछ टाइम पास तो कुछ ब्लॉकबस्टर्स।
2: मोहब्बत हो या म्यूजिक, दोनों अधूरे सुरों में भी खूबसूरत लगते हैं, और यही है ए दिल है मुश्किल की कहानी।
3: आज मुझे लग रहा है कि मैं अपनी फिल्म का हीरो।
2: अयान, एक मस्ती भरा आशिक।
4: जब मैं 2 साल का था, मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई।
1: चली गई?
4: भाग गई।
1: मदर तो इंडिया होती है, तुम्हारी मिल्का निकली, भाग गई।
2: जो प्यार को दोस्ती समझता है, जब तक उसका दिल एलिजे के लिए धड़कना शुरू नहीं करता।
5: बिना गुजारा दिल है मुश्किल।
2: पर एलिजे के लिए दोस्ती का एहसास गहरा है, लेकिन प्यार का नहीं। मोहब्बत के इस सफर में आती है सबा, जो अयान को प्यार का दूसरा रंग दिखाती है, खुद से प्यार करने का।
6: अरे वाह, बड़े वफादार है आपके आंसू, आपकी इजाजत के बगैर बाहर भी नहीं निकलते।
2: लेकिन क्या दिल अपने जज्बात बदल सकता है, या कुछ मोहब्बतें सिर्फ दर्द का गीत बनकर ही जी जाती हैं? क्योंकि कुछ कहानियाँ अंजाम से नहीं, सिर्फ जज्बात से पूरी होती।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है, तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
5: हर दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं होता, कुछ एल्युमिनियम के भी होते हैं, और कुछ के पीछे तो मौत लिखी होती है। राहुल और निधि नए घर की तलाश में, पर जो मिला वो एक मनहूस कहानी थी। एक हवेली जो सदियों से बंद थी और एक दरवाजा जो सालों से बंद था, शायद जाम हो गया था। जब उन्होंने उस दरवाजे को छुआ तो पूरी हवेली जाग गई, दीवारों से सांसें सुनाई देने लगी, दरी पर पैरों के निशान उभरने लगे, और फिर वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर तुमने उन्हें खोला तो हो सकता है अंदर वाले तुम्हें बाहर ही ना आने दें।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: सोचा वरना हंसता रह जाएगा।
2: कौन है ये?
3: तुम्बाड़ एक कहानी जो सिर्फ डर नहीं, लालच का असली चेहरा दिखाती है। बारिश से भरा एक हॉरर फैंटेसी वर्ल्ड जिसमें एक खजाना छुपा है, पर उसके साथ एक श्राप भी। विनायक राव एक लालची इंसान जो तुम्बाड़ के पुराने हवेली के खजाने का राज जानता है।
2: समय का पहिया गोल है, जो बीत गया है हमेशा लौट कर आएगा। सच्चाई, अच्छाई, बुराई और लालच।
3: पर वो ये भूल जाता है कि जो चीज देवी ने खुद अपने पेट में लॉक कर दी, उसे छूना मतलब मौत को इनवाइट करना है। हस्तर वो राक्षस जो सोना चाहता था, पर लालच इतना था कि रोटी भी उसके हाथ से फिसल गई। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, जैसे इंसान का लालच। पर विनायक हर बार अपनी मौत से बच के सोने के सिक्के ले आता है। पर एक सवाल, लालच की कोई सीमा होती है, या एक ना एक दिन वो इंसान को निगल जाता है?
2: डरा नहीं रहा हूं, तुम्बाड़ के लिए तैयार कर रहा हूं।
3: दुनिया में सबसे बड़ा श्राप क्या है? लालच। और तुम्बाड़ शहर ये सबक एक कहानी की तरह नहीं, एक लोरी की तरह सुनाता है। सोचा।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: यार एक बात बता, पानी पर GST लग गया है क्या?
2: अरे नहीं यार, पानी तो बिल्कुल फ्री है।
1: तो फिर भी कोई रख क्यों नहीं रहा? अरे भाई, जब ना कोई टैक्स है ना कोई डिलीवरी चार्ज है, तो एक प्याला पानी रखने में कैसा एतराज है?
2: इससे पहले कि ये बेजुबान मोहल्ले का RTI दाखिल करें कि पानी गया कहाँ, उससे पहले एक बर्तन भर दीजिए और बेजुबानों की जान बचा लीजिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा अच्छा।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून।
1: जीवन का असल सुख किसी और के जीने की वजह बन जाना। सूरज की गर्मी तेज है, हर तरफ तपती जमीन है, लेकिन सोचिए कहीं कोई छोटी सी जान एक बूंद पानी के इंतजार में है। बस एक आदत बना लो, एक छोटी सी प्याली पानी भरकर किसी सुरक्षित जगह रख दो। छोटी सी मेहनत लेकिन किसी के लिए बड़ी राहत। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, उनके लिए भी सोचिए जो बोल नहीं सकते।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है, तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: मुझे वीराना पसंद है, समझे।
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, श्राप बनकर नेटफ्लिक्स के हॉरर सेक्शन की तरह हमेशा जिंदा रहती है। एक शापित हवेली, एक राज जो मौत से भी ज्यादा भयंकर था, और एक जैस्मिन जो सिर्फ नाम से मासूम थी। एक दिन उसने एक तांत्रिक से मेकओवर पैकेज ले लिया और बस अब वो सिर्फ लड़की नहीं डायन बन चुकी थी। पर हर बुराई का अंत होता है, पर इस बार श्राप लाइफ टाइम वारंटी के साथ आया था। सालों बाद हवेली एक बार फिर जाग गई और इस बार नए मेहमान की तलाश थी।
3: तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना।
2: वीराना सिर्फ एक जगह नहीं, एक हॉरर फिल्म का एक्सटेंडेड वर्जन है। जो आया वो गया नहीं, और जो गया उसका लास्ट सीन अब तक एक्टिव है। अगर कभी किसी वीरान हवेली में फ्री स्टे मिले तो समझ लो पेमेंट तुमसे नहीं, तुम पर होने वाला है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इशार।
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो। इस गर्मी ने कर दिया है सबका बुरा हाल।
0: वाह वाह।
1: अब बॉस के लिए पीपीटी के साथ

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: सोचा वरना हंसता रह जाएगा।
2: कौन है ये?
3: तुम्बाड़ एक कहानी जो सिर्फ डर नहीं, लालच का असली चेहरा दिखाती है। बारिश से भरा एक हॉरर फैंटेसी वर्ल्ड जिसमें एक खजाना छिपा है, पर उसके साथ एक श्राप भी। विनायक राव एक लालची इंसान जो तुम्बाड़ के पुराने हवेली के खजाने का राज जानता है।
2: समय का पहिया गोल है, जो बीत गया है हमेशा लौट कर आएगा। सच्चाई, अच्छाई, बुराई और लालच।
3: पर वो ये भूल जाता है कि जो चीज देवी ने खुद अपने पेट में लॉक कर दी, उसे छूना मतलब मौत को इनवाइट करना है। हस्तर वो राक्षस जो सोना चाहता था, पर लालच इतना था कि रोटी भी उसके हाथ से फिसल गई। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, जैसे इंसान का लालच। पर विनायक हर बार अपनी मौत से बच के सोने के सिक्के ले आता है। पर एक सवाल, लालच की कोई सीमा होती है, या एक ना एक दिन वो इंसान को निगल जाता है?
2: डरा नहीं रहा हूँ, तुम्बाड़ के लिए तैयार कर रहा हूँ।
3: दुनिया में सबसे बड़ा श्राप क्या है? लालच। और तुम्बाड़ शहर ये सबक एक कहानी की तरह नहीं, एक लोरी की तरह सुनाता है। सोचा

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है, तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: आसान ही आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना।
2: जब मोहब्बत इबादत बन जाए तो कुर्बानी कैसे। प्यार वो नहीं जो सिर्फ जीने दे, प्यार तो वो है जो खुद को मिटाकर भी दूसरे को जीने का हौसला दे।
1: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: राहुल जेकर, एक मशहूर सिंगर जिसका सुर दुनिया के लिए एक जादू था।
1: सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं।
2: पर उसके अंदर का दुख एक ऐसा राग था जो सिर्फ वो समझता था। और फिर एक दिन, एक बारिश भरी रात में, उसकी आवाज से ज्यादा खूबसूरत एक आवाज उसके दिल तक पहुंची। आरोही।
3: आरोही
4: क्या?
3: कुछ नहीं, बस यूं ही।
1: हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
2: एक सिंपल सी लड़की जो सिर्फ गाना चाहती थी, राहुल ने उसके सपनों को पंख दिए, उसे बुलंदियों तक ले गया।
4: कितना अच्छा गाते हो तुम।
3: मैडम, ट्रेनिंग मेरी नहीं, आपकी है, चलो गाओ।
5: तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना।
2: पर खुद वो प्यार जो उसके जीने की वजह बना, वही उसके होने का बोझ बन गया।
6: क्यों आए तुम? दूर ही रहना था ना।
7: अरे यही तो बात है, जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था। इसके पहले कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, जस्ट गो अवे।
1: भुला देना मुझे, अलविदा तुझे।
2: आरोही का प्यार उसके लिए दुआ था, पर कभी कभी दुआएं भी किस्मत से नहीं जीत सकती। एक प्रेम कहानी जो अधूरी होकर भी पूरी थी, एक आशिकी जो मरने के बाद भी जिंदा थी।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Warm up at least 5 to 10 minutes minimum होना ही चाहिए running से पहले. उसमें आप brisk walk कर सकते हैं, jogging कर सकते हैं, gentle stretches कर सकते हैं. दूसरा point hydration का है. Hydration considering depend करेगा मौसम कैसा है, गर्मी कितनी है. पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है. हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना ज़रूरी है. ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है. जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें. डॉक्टर कॉलिंग.
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है.

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

वास्तुओं और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत के इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का यह एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहां दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में
बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था, तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है। एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है।

पहचान करना, जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप।

उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई हैं। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहाँ भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिका नेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद

वे कई बार यहाँ आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहाँ हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की फॉरबिडन फॉरेस्ट वाली कहानी को पहले तो सुपरस्टिशन मानता है, लेकिन भाई जंगल ने भी सोच रखा है एक बार अंदर तो आओ फिर समझाते हैं। फिल्म में माइथोलॉजी, फोकलोर, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स और एक्शन का पूरा मिक्स है। और अभी इसका बस और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि मेकर्स ने छठी मैया नाम का एक नया सॉन्ग भी रिलीज किया है और वहां से ये फिल्म जो है इंस्पायर्ड भी है। द वन 25 सितंबर को थिएटर्स में आएगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है।
1: रेडियो महारानी 89.6।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: अनजाने अजनबी।
2: शादी सिर्फ शादी नहीं होती, थोड़ी सी शर्माहट, थोड़ी सी मिठाई और
3: हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार।
2: एक तरफ प्रेम, जो सीधा साधा लड़का

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: 89.6 FM. कुछ छक्के
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
2: कुछ हटके.
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार.

जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होता है।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: साथियों इस छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से आप सामने हाजिर हैं। हम बात कर रहे हैं विमल जी से। विमल जी अपने ट्रांसप्लांट की जर्नी की स्टोरी बता रहे हैं। तो विमल जी आप हमें ये बताइए कि जब आप चेन्नई चले गए तो चेन्नई में आपने जब हॉस्पिटल में दिखाया उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर करना पड़ा होगा, तो करीब कितने दिन तक या कितने महीने तक आपको अपने लंग्स मिलने तक का वेट करना पड़ा?
2: हाँ साथियों मैं एक और चीज आपको बता दूं सौरभ जी, मेरे अंदर ना कभी कोई डर नहीं आया। जैसे होता ना कि मुझे कहा गया कि आपकी लाइफ छोटी है, तो मैंने कहा जितनी लाइफ लिखी है जिंदगी उतनी है, छोटी है बड़ी है एक चिंता हो जाती है भाई मैं क्या करूंगा, ना नथिंग, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा दाता मेरा ऊपर है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, मेरी सपोर्ट है, सबकी विशेज है, और ये मैं मैच को जीतूंगा ही, मैं मैच जीतने के लिए ही आया हूँ, हारने के लिए नहीं। ओके मेरी इवैल्यूएशन हुई, हम गए थे लंग्स ट्रांसप्लांट कराने, लेकिन वैल्यूएशन के अंदर आया कि लंग्स की वजह से मेरा हार्ट की आर्टरी भी डैमेज है
1: जी।
2: तो हमारे को डॉक्टर ने बुलाया कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, हमारे को काउंसलिंग की कि भैया ऐसा है विमल जी, आप सबको हम बता दें, अगर आपका हम लंग्स ट्रांसप्लांट करेंगे किसी यंग आदमी का और वो हार्ट आपका वो झेल नहीं पाएगा, हार्ट की आर्टरीज आपकी जो है वो डैमेज हो चुकी हैं, तो हम चाहेंगे आप हार्ट और लंग्स इकट्ठे लगवाएं।
1: मतलब आप लंग ट्रांसप्लांट करवाने गए थे लेकिन एडिशनली आपको हार्ट ट्रांसप्लांट भी करवाने की सजेशन डॉक्टर्स के द्वारा दी गई।
2: हाँ तो वो उन्होंने जो हमारे को दी, तो हमने हंसते हंसते ये कहा डॉक्टर साहब आप हमारे लिए गॉड हो, आप बेस्ट हो, जो आप करोगे आप साइन करवाओ, आप अपना काम करो
1: जी।
2: तो आप ये देखो इतनी बड़ा डिसीजन ऑन द स्पॉट लेना, ऑन द स्पॉट ये भी एक उसको कहते हैं ना जिंदा दिली है, दिलेरी है, और मेरे में क्या कॉन्फिडेंस था, जब कॉन्फिडेंस था कि यार मैं तो ठीक होने के लिए आया हूँ तो मैं ठीक हो गया। मेरा वहां शर्मा जी सबसे बड़ा क्या था कि वहां फिर हमारा नाम रजिस्टर्ड हुआ, वो रजिस्टर्ड वही करवाते हैं हॉस्पिटल वाले जो उनकी एक एनजीओ की गवर्नमेंट है, वहां नॉमिने उनका आप सबका जो भी ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं रजिस्ट्रेशन होता है, उसके अंदर टोटल इवैल्यूएशन किया हुआ आपकी बॉडी का वहां रजिस्टर्ड होता है, जिसमें आपकी चेस्ट का साइज क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपकी हाइट क्या है, जो भी पैरामीटर है, तो उसके बाद आपकी पैरामीटर के अनुसार अगर अंग आपको मिलते हैं तो आपका अगर 100 नंबर है तो पहला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर पहला है तो हो सकता है 100 नंबर पे आ जाए।
1: तो करीब कितने कितने महीने आपको वेट करना पड़ा लंग्स के लिए?
2: 3 महीने बाद उन्होंने कहा कि भाई आपका वो बी रेडी आफ्टर 3 मंथ कि हमारे को किसी डोनर के मिले हैं, बट आफ्टर उनका थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे बाद फिर फोन आ गया कि नहीं आप अपना खाना खाइए पानी पीजिए, जो डोनर आया था उसके डोनर जो इन्फेक्टेड थे इसलिए हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते।
1: तो अच्छा तो फिर आपको टोटल वेट कितना पड़ा करना पड़ा?
2: 10 महीने।
1: 10 महीने के बाद आपको अपने लंग्स मिले?
2: 9-1 महीने के बाद मुझे डोनर मिला बिल्कुल परफेक्ट।
1: 9 महीने तक फिर आप चेन्नई में ही रहे या वापस दिल्ली आ गए?
2: सर जी क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कोई भी ट्रांसप्लांट वाला अगर बाहर है तो वो घर नहीं आ सकता, बिकॉज अगर डोनर ने बाई चांस अपने अंग दान किए तो विद इन एन आवर
1: बिल्कुल
2: 1-2 घंटे के अंदर अंदर हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट हो जाना ही चाहिए।
1: विमल जी मैं यहाँ पर श्रोताओं को भी बताना चाहूंगा कि जैसा विमल जी ने कहा कि हम अंगों को प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, हम अंगों को किसी फ्रिज में या किसी मशीन में जिंदा नहीं रख सकते, जैसे बॉडी में से ऑर्गन्स निकालेंगे तो कुछ घंटों के अंदर अंदर उनको ट्रांसप्लांट करना जरूरी हो जाता है वरना वो खराब हो जाते हैं जी। तो विमल जी ऐसे समय में जब आपको 9 महीने अपनी सिटी से बहुत दूर दूसरी सिटी में शिफ्ट होना पड़ा विथ मेडिकल कंडीशन, जब आप खुद ठीक नहीं है तो आपको कई समस्याओं का सामना पड़ा होगा, कुछ एक समस्या है जो आप श्रोताओं को बताना चाहते हो या जो जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनके साथ उनका सॉल्यूशन शेयर करना चाहते हो कि हाँ ये समस्या हमें आई थी, तो आप अगर कभी जाना हो तो आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आप ये व्यवस्था लेके चले, आप अगर उन्हें कुछ बताना चाहते हो।
2: बिल्कुल एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है, और वैसे भी सौरभ जी मैं आपको बता दूं मैं यूट्यूब के ऊपर हूं, मेरे 3 वहां अपने मैंने अपनी वीडियो डिलीवर की हुई है, एक मेरी अपोलो की तरफ से भी है। मेरे पास बहुत फोन आते हैं थ्रू आउट इंडिया एंड अब्रॉड, जब वो मेरे से मीट करते हैं ना, तो आधी से ज्यादा टेंशन तो मैं उनकी दूर कर देता हूँ। मैं कभी भी उनसे ना ऑडियो पे बात नहीं करता, वीडियो पे बात करता हूँ। वीडियो पे देखता हूँ कि वो मेरा चेहरा देखें
1: जी,
2: मैं कैसा दिखता हूँ और क्या कैसे बात करता हूँ। तो ये समस्या तो आधी मैं वैसे ही दूर कर देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ जी, हम गए, हमने वहां मकान लिया। एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम बड़ी है, ये तो आप मिलते ही हो, फिर भी हमने किसी तरह मैनेज कर लिया, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी समझ गए। वहां फिर आप किसी दूसरी जगह रह रहे हो, हर चीज की समस्या आती है। लेकिन अगर आप समस्या को समस्या ना लो, अगर आप समस्या को समस्या लोगे तो फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपको कोई समस्या कोई नहीं है, जो भी आएगी ये हम ठीक करेंगे, इसको पार करेंगे, पूरी करेंगे।
1: बिल्कुल विमल जी, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे।

हेलो, मैं डॉक्टर आकिब, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो मेंस हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको जनरली लोग खुद इग्नोर करते हैं। सो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेंस हेल्थ उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि बाकी बॉडी की डिजीजेस इम्पॉर्टेंट है। सो स्क्रीनिंग और आपका जो हेल्दी इंट्रैक्शन विद योर डॉक्टर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डॉक्टर को कुछ लगता है कि आपके मेंस हेल्थ में कोई भी एबनॉर्मलिटी है जो कि आपसे बात करके ही पता चलेगा, सो वो आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, आगे कुछ ट्रीटमेंट लेना है तो वो आपको बता देंगे। सो मैसेज यही है कि आप अपने हेल्थ को, मेंस हेल्थ को पर्टिकुलरली इग्नोर ना करें। कोई भी आपको सिम्टम्स लगते हैं, जस्ट गो टू योर डॉक्टर एंड स्पीक अप। थैंक यू डॉक्टर कॉलिंग।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: साथियों इस छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से आप सामने हाजिर हैं। हम बात कर रहे हैं विमल जी से। विमल जी अपने ट्रांसप्लांट की जर्नी की स्टोरी बता रहे हैं। जैसे कुछ समस्याएं, जैसे आपने बताया कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर पे थे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था, हाइजीन, खाने की व्यवस्था, उन चीजों की जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कभी जरूरत पड़ गई या दवाइयों की, उन सब चीजों को कैसे मैनेज किया आपने?
2: सौरभ जी मैंने सिलेंडर भी रखा हुआ था, कंसंट्रेटर भी रखा हुआ था
1: जी।
2: तो उसमें ये था कि मैंने दोनों चीजें रखी हुई थी।
1: ये जो आप बता रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर या कंसंट्रेटर, तो ये आपको खरीदना पड़ा था या फिर रेंटल मिलता है वहाँ पर?
2: नहीं, वो मेरे साथ मेरा बेटा था, मेरी वाइफ थी
1: जी।
2: सारा सर्च किया लोकल, वहाँ पर हमारे को कंसंट्रेटर वाला मिला, उससे हमने कंसंट्रेटर लिया रेंट पे। सिलेंडर वाला मिला, नियरेस्ट कौन सा है, उससे हमने सिलेंडर लिया रेंट पे। तो जो भी रेंट हमने पे करना था वो हमने पे किया, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी चीज नहीं है कि कोई चीज अवेलेबल ना हो।
1: अगर हम रेंट की बात करें तो जैसे कॉन्सेंट्रेटर हुआ या ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ, करीब करीब कितना पैसा देना पड़ता है इनके एक महीने के रेंट के लिए?
2: दैट डिपेंड्स सौरभ जी, सबसे बड़ी बात,
1: थोड़ा सा हम आइडिया लेना चाहते हैं।
2: मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप कोठी लो या आप ऐसी जगह ले लो या आप ऐसी जगह ले लो, तो डेट डिपेंड्स। जैसे दिल्ली के अंदर है कि ये इसका रेंट 10,000 है, यही साउथ दिल्ली में चला जाएगा 50,000 हो गया, यही गोल्फ लिंक में चला जाएगा तो 1,00,000 हो गया, यू नो डेट एरिया। हाँ, तो उसके बाद क्या है, जितने भी ट्रांसप्लांट वाले होते हैं उनको जो रूम या बोला जाता है कि आपने वहां रहना है, उस जगह रहना है जहां पर कोई भी फंगस ना हो
1: जी,
2: मकान बिल्कुल क्लियर हो, साफ सुथरा हो, कोई आपको वहां से कोई बीमारी न लगे, टॉयलेट ठीक हो, किचन ठीक हो, हर चीज को वो देखते हैं। तो बिफोर ऑपरेशन तो वो इतना नहीं परवाह कर रहे थे, आफ्टर ऑपरेशन हॉस्पिटल खुद जाएंगे, चेक करेंगे, अगर उनको वो जगह जहां आपने आपके ऑपरेशन के बाद आपने शिफ्ट होना है वो उनको अप टू द मार्क लगी, तो वो आपको कहेंगे आपने यहाँ शिफ्ट होना है। उसके बाद क्या है कि बिफोर शिफ्टिंग हॉस्पिटल की टीम जाएगी, पूरे मकान को सैनिटाइज करेगी, पूरे मकान के अंदर जितनी भी फंगस ये वो जाला वाला है वो सब ठाप करेंगे, और एक दिन के बाद फिर वो आपको अलाउ करेंगे कि यू कैन मूव देयर। अब मैं जहां रह रहा था, जो मैंने मकान लिया था, मैंने लिया था 60,000 पर मंथ
1: जी। सो हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे।
2: ठीक है सर।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसका टीजर देखकर लग रहा है कि जंगल में आने से पहले गूगल मैप्स नहीं थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लेकर आ रही है एक फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी, जहां एक सिटी ब्रेड आदमी अपने विलेज लौटता है और वहां की

एगी और सिद्धार्थ तमन्ना की फ्रेश पेयरिंग के साथ ये जंगल वाली मिस्ट्री कितनी एडवेंचरस बनती है ये देखना बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। 89.6 रेडियो महारानी। कुछ कुछ कुछ, कुछ, कुछ, कुछ, कुछ, कुछ, कुछ, कुछ

और एक दिन उसने हिम्मत करके अपना दर्द बताया था। पहली बार मैं ठीक नहीं हूं ये सच सबको सुनाया था। और उस पल उसे समझ आया मदद मांगना हार नहीं, अंधेरों से लड़ने वालों की ये सबसे बड़ी पुकार सही।

कुछ कह जाता है। कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहे होते हैं। किसी का हाल पूछने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन शायद वही कुछ सेकंड किसी की जिंदगी बदल दें।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार साथियों, हमारा ये छोटा सा ब्रेक खत्म हो गया है और हम वापस अपने शो में आ गए हैं। हम बात कर रहे हैं विमल जी से। हम विमल जी से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप ट्रांसप्लांट के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी में आप शिफ्ट होते हैं तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे बात आगे बढ़ती है। तो विमल जी, आपने बताया कि आपने कॉन्सेंट्रेटर और जो भी मेडिकल डिवाइसेज या जो चीजें आपको जरूरत पड़ी थी आपको उन्हें रेंट पे लेना पड़ा था। तो इसके बाद आप हमें ये बताइए कि लंग ट्रांसप्लांट अब जब आपका हो गया तो उसके बाद की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए आपके, क्योंकि एक कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल में लंग्स जिनके खराब हैं या जिनको लंग्स से जुड़ी बीमारियां हैं तो उनको तो बहुत स्पेशल प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। तो आपने कोरोना काल को कैसे काटा और अभी भी आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं?
2: आप भी बड़ा इसको बात को सुन के आप भी बड़े हैरान रहेंगे। नंबर वन ये है कि मैं दिल्ली और एनसीआर के अंदर पहला शख्स हूँ, आई एम द फर्स्ट मैन जिसका लंग्स और हार्ट एक ही दिन कंबाइंड ट्रांसप्लांट हुआ
1: जी।
2: पहला शख्स हूँ दिल्ली के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। ओके, मुझे भी पता है काफी हुए हैं लेकिन लंग्स नहीं। जिसके लंग्स हुए हैं उसका हार्ट नहीं, ठीक है। कट्ठा एक ही आदमी का पूरा सेट हार्ट एंड लंग्स का मुझे लगा है 6 जुलाई 2019। आज मुझे 2.5 साल होने वाले हैं। 2.5 साल 6 जुलाई 2019 से पहले मैं पेशेंट था
1: जी।
2: पहले मुझे ये पूछते थे विमल तेरा क्या हाल है, तो अब मैं पूछता हूँ भैया तुम्हारा क्या हाल है
1: जी।
2: तो ये वाइस वर्सा हो गया ना
1: जी। बिल्कुल,
2: आज पेशेंट आई एम नॉट द पेशेंट आई वुड नॉट लाइक

0: फेस टू फेस बात करोगे। मैं अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करता हूँ, आज भी करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। एक ख्वाहिश है लंबी इनिंग खेलने की, तो खेलेंगे। 2020 वाला मैच नहीं है, लंबी इनिंग। तो लंबी इनिंग का मतलब है जितनी भगवान ने मेरे को वोट किया है, उसने मेरे को मेहरबानी किया है, तो उसका मैं एंजॉय करूंगा। और ये भी नहीं है कि मैं नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ मेरे को हिदायतें हैं वो मैं बरतूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
1: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: 89.6 FM कुछ हटके।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। सेहत की बात जब होती है तब हम अक्सर डाइट, फिटनेस और एक्सरसाइजेस की बातें करते हैं, लेकिन बॉडी के कुछ सिग्नल ऐसे भी होते हैं जिन्हें मैन अक्सर इग्नोर कर देते हैं, UTI। आज हम बात करेंगे UTI के ऊपर। यूरिन करते वक्त जलन, बार बार वॉशरूम जाना, यूरिन रोकने में दिक्कत या फिर लोअर एब्डोमेन में पेन, क्या ये सिर्फ छोटी मोटी प्रॉब्लम है या फिर बॉडी किसी बड़ी दिक्कत की तरफ सिग्नल दे रही है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मेन में यूरिनरी इन्फेक्शन क्यों होता है, इसके सिम्टम क्या है और कब डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ पोषण की पाठशाला में जुड़ रहे हैं डॉक्टर आकिब, जो कि एक यूरोलॉजिस्ट है फ्रॉम यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर से आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आकिब आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, हमें बहुत ही आसान शब्दों में समझाइए आखिर UTI क्या होता है, मेन में इसके सबसे कॉमन सिम्टम क्या है अगर हम सिम्टम्स की बात करें, और साथ ही ये बताइए कि किन सिम्टम को इग्नोर करना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है।
1: सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो मेरा नाम डॉक्टर आकिब है, मैं यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। प्रेजेंटली मैं यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 और सेक्टर 88 में काम करता हूँ। आपका सवाल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बेसिकली अगर हम बताएं तो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो कि किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट और यूरेथ्रा, कहीं भी उसमें इन्फेक्शन हो उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। इन जनरल लैंग्वेज जैसे पेशाब का इन्फेक्शन होना, वो लिमिटेड टू दीज ऑर्गन्स रहता है, उसी को हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। इनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स में, मेन और वुमन, जनरली फीमेल्स में बहुत कॉमन रहता है UTI, मेल्स में उतना कॉमन नहीं रहता है, और अगर मेल्स में UTI होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड UTI। सो वो एक नॉर्मल UTI नहीं होता है। सिम्टम्स में पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब आना, रुक रुक के पेशाब

0: आपका यूरिन बार बार जाना, फ्रीक्वेंसी सडनली चेंज होना, पेशाब में बहुत ज्यादा जलन होना, लोअर एब्डोमेन में पेन होना या रुक रुक के पेशाब आना, ये कॉमन सिम्टम्स है यूटीआई के। और अगर प्लस फीवर, ये कॉमन सिम्टम्स है, और अगर ये चीजें आती हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए।
1: जी डॉक्टर, आज हमें डॉक्टर ने बहुत ही क्लियरली समझाया है कि यूरिन से जुड़े कुछ सिम्टम्स को कभी भी नॉर्मल समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर मेन में यूटीआई होता क्यों है? क्या हमारी डेली हैबिट भी इसके पीछे की वजह हो सकती है? इस सवाल

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का

देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है.

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। पोषण की पाठशाला सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज डॉक्टर आकिब। तो डॉक्टर आकिब, आज हम बात कर रहे हैं मेंस यूटीआई हेल्थ को लेकर। सबसे पहले हमें ये बताया आपने कि आखिर यूटीआई क्या होता है, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेन में यूटीआई होने का सबसे कॉमन रीजन क्या है, और क्या वो रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से यूटीआई अक्सर होता है, और साथ ही अगर यूटीआई को बहुत ही नॉर्मली लिया जाए तो इसका हमारी हेल्थ पर कितना इफेक्ट पड़ता है।
1: जी बिल्कुल, मेल्स में यूटीआई जैसे मैंने बोला कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई होता है, सो अंडरलाइंग वी हैव टू सी कुछ उनका प्रॉब्लम्स क्या है जिससे ये हो रहा है। सो कॉमन चीजें डायबिटीज, पोअर हाइजीन, साफ सफाई ना रखना, पानी का कम लेना, सो ये सब कॉमन चीजें हैं जिसकी वजह से मेल्स में यूटीआई हो सकता है, या कोई स्ट्रक्चरल डैमेज, स्ट्रक्चरल चीजें जो पेशेंट की यूरिनरी ट्रैक्ट में है, जैसे किडनी का शेप डिफरेंट है, किडनी में कोई स्टोन्स पड़े हैं, कहीं रास्ते में रुकावट है, जिसमें प्रोस्टेट एक ओल्ड एज में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उस पे हम आगे बात करेंगे, उसकी वजह से यूटीआईज बार बार हो सकते हैं। एक इसमें जो पॉइंट आपने बताया सेक्सुअल एक्टिविटी, यस दैट कैन आल्सो कॉज यूटीआई। सो अगर किसी पेशेंट को जनरली अपनी वाइफ के साथ इंटरकोर्स के बाद में यूटीआई होता है या ये सिम्टम्स होते हैं, सो दैट इज आल्सो अ कॉमन रीजन। इसलिए उनको दोनों पार्टनर्स को एक बार डॉक्टर के पास जाके अपने आप को एग्जामिन करवा लेना चाहिए।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, और बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। और आज मैं अकेली नहीं हूँ स्टूडियो में, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेप। और आज हम डॉक्टर से जान रहे हैं मेंस यूटीआई हेल्थ के बारे में। तो डॉक्टर, अगर मैं बात करूँ अब यूटीआई के सिम्टम की, अगर किसी मेन को यूटीआई सिम्टम है तो डॉक्टर तक पहुँचने के बाद डायग्नोसिस कैसे होता है, और साथ ही क्या यूरिन टेस्ट या फिर यूरिन कल्चर की जरूरत पड़ सकती है? इसके साथ ही ये भी बताइए कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स लेने से सिम्टम कम होते हैं, और साथ ही अगर मेडिसिन बंद कर दे तो कितना डेंजरस हो सकता है अनट्रीटेड यूटीआई, अक्सर किडनीज तक भी पहुंच जाता है। सो इस बारे में भी हमें बताइए
1: यूटीआईज के सिम्टम्स क्या हैं, तो डॉक्टर के पास आप पहुंचेंगे और कैसे डायग्नोस होगा? सिम्टम्स हमने पहले बता दिए क्या क्या हैं, तो आपकी जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपकी एक हिस्ट्री लेगा, है ना, ये सब चीजें आपसे पूछेगा, आपके रिस्क फैक्टर्स हैं वो पूछेंगे, और उसके बाद में आपको एग्जामिन कर लेंगे। उसके बाद में कुछ एक टेस्ट होते हैं, जैसे बेसिक टेस्ट यूरिन का टेस्ट है जिसमें रूटीन और कल्चर टेस्ट होता है, एक अल्ट्रासाउंड होता है, और अगर जरूरत पड़े कुछ ब्लड के टेस्ट भी करने पड़ सकते हैं जिससे कि यूटीआई का डायग्नोसिस बनता है। रहा सवाल एंटीबायोटिक्स, खुद से एंटीबायोटिक्स लेना एक हमारी सलाह नहीं है, आपको प्रॉपरली डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करा लेना चाहिए, उसके बाद ही डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक्स करे वो ले लेना चाहिए। अनट्रीटेड यूटीआई किडनी तक पहुंच सकता है क्या? बिल्कुल पहुंच सकता है। अनट्रीटेड यूटीआई अगर होता है किडनी तक पहुंच रहेगा तो उसको हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइट्स। अगर पेशेंट को पाइलोनेफ्राइट्स होता है तो उसमें बुखार के साथ ठंड आना, कमर में बहुत दर्द होना और यूरिन की दिक्कत, ये सब चीजें रहती हैं। और एक बार किडनी इफेक्ट हो गई पाइलोनेफ्राइट्स तो ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, कई बार ट्रीटमेंट आपका जो है उतना सीवियर होता है सिम्टम्स की, बीपी कम होना, आईसीयू में पहुंचना, इन सब चीजों तक नौबत आ जाती है।
0: बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज डॉक्टर ने हमारे साथ शेयर की है, मतलब सिम्टम को दबाना नहीं बल्कि उनकी वजह समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेटर होता है, ये भी याद रखिएगा। सो डॉक्टर, अभी हमने सिम्टम्स के बारे में बात की, प्रिवेंशन के बारे में बात की, लेकिन अपना कुछ ऐसे सिंपल हैबिट्स के बारे में भी जानेंगे जो मेंस अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले लेते हैं यू म्यूजिक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, दिस इज आरजे अंशली और आज हम बात कर रहे हैं पोषण की पाठशाला में एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है मेंस यूटीआई हेल्थ। सो मेरे साथ डॉक्टर बने हुए हैं डॉक्टर आकिब स्टूडियो में। डॉक्टर, मैंने बहुत कुछ जाना आपसे यूटीआई के बारे में, सिम्टम्स के बारे में भी जाना, प्रिवेंशन के बारे में भी जाना, लेकिन अब बात करते हैं यूटीआई से बचने के लिए मैंने अपनी डेली लाइफ में ऐसी कौन सी प्रैक्टिकल हैबिट्स है जो अपना सकते हैं, और साथ ही अगर बात की जाए फीवर, चिल, बैक साइड पेन, वॉमिटिंग या फिर यूरिन में ब्लड जैसे सिम्टम्स जब आ जाएं तो क्या इमरजेंसी वार्निंग साइन हो सकते हैं जिन्हें एक मैन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। सो, ये सारी सिम्टम्स जो हैं जैसे ब्लड आना, फीवर, बार बार यूरिन जाना, पेशाब करने में जलन होना, ये सारी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। इसमें से आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। ये सिम्टम्स हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाके अपना इन्वेस्टिगेशन और आगे का ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। नाउ, आपने बताया प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली मेल्स, लिक्विड इनटेक अच्छा रखना, हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, और साफ सफाई का ख्याल रखना। खासकर मेल्स में फोर स्किन कई बार रहती है जो सम पीपल टेंड टू नॉट कीप इट क्लीन, सो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसको रोज साफ कर लेना चाहिए। और अगर यूरिन में कुछ भी सिम्टम्स हैं जैसे रुकावट होना, खुल की पेशाब नहीं आना, दैट प्रिडिस्पोजेस अ पर्सन टू इन्फेक्शंस, इसलिए उसको एड्रेस करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्लस कोमॉर्बिड कंडीशंस क्या होती है, जिसमें की सबसे कॉमन डायबिटीज है, डायबिटीज कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू
0: सो मच डॉक्टर। और डॉक्टर, आज आपने हमारे लिसनर्स को यूरिनरी हेल्थ से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दी है। अक्सर मेन ना हेल्थ के कुछ इश्यूज पर बात करने में हेजिटेट फील करते हैं, लेकिन हेल्थ में एम्बैरेसमेंट की नहीं बल्कि अवेयरनेस की जरूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका, आज आप हमारे साथ पोषण की पाठशाला में जुड़े। हमारे लिसनर्स को सभी सवालों के जवाब आज आपसे मिले हैं, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस यही कहना चाहती हूँ, बॉडी के सिग्नल को इग्नोर नहीं बल्कि अंडरस्टैंड करना चाहिए। सेहत से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम अगर हम टाइमली ट्रीट करते हैं ना तो वो ठीक हो जाती है। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। दिस इज आरजे अंशली साइनिंग ऑफ।

Namaste, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I am a women health coach and teen parenting expert. Over the 13 years of experience, as the social media is growing, I can see बहुत सारे लोग social media follow करते हैं, बहुत सारे trends follow करते हैं, बहुत सारे influencers और celebrities को follow करते हैं और crash diets करते हैं, जो कि उनकी body के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है. जो दूसरे की body पे suit कर रहा है वो आपकी बॉडी पे सूट करेगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. कुदरत ने जैसे हम सबके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट बनाए हैं, हम सबकी बॉडी अलग है. हमारा डेली रूटीन ही डिसाइड करता है कि हमें कितने अमाउंट में कितने न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स कंज्यूम करने चाहिए. एक डे नॉर्मल जो हम घर की थाली में खाना खाते हैं वो हमारे डेली नॉर्मल रूटीन के लिए कम्फर्टेबल है. लेकिन आप कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स का आपको जानना बहुत जरूरी है. और वो आप एक नियर बाय डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही डिसाइड करें कि कौन सा सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपके लिए सही रहेगा, कितना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना चाहिए और अपनी डाइट में आपको क्या वेरिएशंस लाने चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सके. तो अपने आप कुछ भी रैंडमली मत खाइए, एक सही सलाहकार की मदद से ही आप अपने भोजन को चुनिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए. धन्यवाद. डॉक्टर कॉलिंग.

0: ब्रेक है।
1: हर सफर में एक ऐसा साथी जरूर चाहिए जो सिर्फ सेवाएं नहीं भरोसा भी दे।
0: सालों से लाखों लोगों के विश्वास का नाम अलंकित,
1: और अब अलंकित फरीदाबाद में एक नई उपलब्धि के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: आप सादर आमंत्रित हैं अलंकित के नए ऑफिस के इनॉगरेशन पर 7 सितंबर 2026
1: सोमवार सुबह 10 बजे से SCO 36 फर्स्ट फ्लोर मंशा वेगा स्ट्रीट सेक्टर 82 फरीदाबाद।
0: आइए इस विशेष अवसर का हिस्सा बने और हमारे

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बातें हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में कह नहीं पाते वो किसी नज्म में निकल जाती हैं या किसी कविता में सांस लेने लगती हैं। और शायद इसीलिए हर पोइट सिर्फ लिखता नहीं है बल्कि अपना एक हिस्सा छोड़ जाता है अल्फाजों में। तो आज इन्हीं अल्फाजों पर बात होगी। आज दिल शायराना में मेरे साथ अखिलेश पुरोहित जी मौजूद हैं जो कि एक बहुत ही बढ़िया पोइट हैं, तो आज उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: जी मैम, बहुत बहुत आभार। रेडियो महारानी की तरफ से मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ
4: जी,
5: और आपका आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे मौका दिया आपने
4: जी। तो मैं हर किसी शायर से या पोइट से यही सवाल सबसे पहले पूछती हूँ कि आपने क्यों चुना पोइट्री को, पोइट्री को आपने चुना या पोइट्री ने आपको चुना?
5: एग्जैक्टली मैं इसी सवाल का आपके इस सवाल में ही जवाब रहता है, क्योंकि कुछ चीजें नियति निर्धारित करती है और जो नियति निर्धारित कर लेती है उसके बाद हम नहीं जा पाते। तो मेरा ये मानना है कि शब्दों ने, कविता ने या साहित्य ने मुझे चुना है, ना कि मैंने उसे चुना। और कोई भी शायर या कवि कोई भी हो वो इतना स्वतंत्र नहीं है कि इस प्रोफेशन को खुद चुने
4: जी।
5: तो मुझे लगता है कि ये तो नियति का निर्धारण है
4: जी। तो जब हम किसी भी फील्ड में आ रहे होते हैं या कोई भी चीज़ हम चूज करते हैं अपने लिए, तो हम कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं कि हमने उन्हें पढ़ा था या हमने उन्हें बहुत सुना था। तो कौन ऐसे शायर या पोइट रहे जिनको आपने बहुत सुना है?
5: जी बहुत अच्छा सवाल आपका है, क्योंकि मैं हिंदी पृष्ठभूमि से हूँ और मेरी स्टार्टिंग की जो जर्नी है वो हिंदी से जुड़ी रही। मैं संस्कृत में भी पढ़ा। तो 2009 और 10 के आसपास जब मैंने

0: में एडमिशन लिया, तब आदरणीय कुमार साहब को बहुत सुना, और उसके साथ साथ जब साहित्य में हमारे जो दिनकर साहब हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी, तो उनको पढ़ते पढ़ते, और दूसरी बात जो मूल है, मुझे लगता है कि जो मैं रामचरितमानस को पढ़ता था,
1: क्या बात,
0: और उसकी जो चौपाइयां हैं उनको अलग अलग तरीके से गाने की कोशिश करता, तो मुझे लगता वो रिदम या ईश्वर की कृपा का हो या माँ शारदे का आशीर्वाद, तो कुछ ना कुछ वहां से जुड़ी चीजें, बाकी कुमार साहब रहे, कुमार बेचैन साहब रहे, तो इन सब चीजों को बहुत सुना है
1: जी।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: एक और सवाल है मेरा, हर पोइट का अपना एक मूड होता है लिखने का, तो सवाल ये है कि जो कविता होती है वो किस चीज से पैदा होती है, ऑब्जर्वेशन से या अपने खुद के इमोशन से?
1: जी बहुत अच्छा सवाल, इसलिए है कि कवि और शायर वो नहीं है, सबसे बड़ी जो उपलब्धि उसकी ये है कि जो वो खुद महसूस कर रहा है वो तो वो बयां करेगा ही, सबसे बड़ी खासियत उसकी ये है कि जब वो सामने वाले के दर्द को बयां करे,
0: जी
1: मतलब उसकी जगह पे खुद के दिल को रखकर देखेगा तो जो एहसास उत्पन्न होते हैं उसको तालमेल मिलता है तो वो कविता का रूप ले लेती है। मैं शॉर्ट में कविता की डेफिनेशन भी आपको बताता
0: हूं। बिल्कुल बिल्कुल।
1: कि कविता का मतलब कल्पना और

0: जिनकी कविताएं हमारे समाज को बहुत पहले से ही आईना दिखाने का काम कर रही थीं और कर रही हैं इनफैक्ट। तो आज के वक्त में कितने परसेंट ऐसे कवि या शायर रहे हैं जो वाकई में समाज को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं?
1: देखिए, इस चीज का मूल्यांकन और आकलन करने की मेरी क्षमता तो नहीं है, लेकिन हिंदी का साहित्य का एक छोटा सा विद्यार्थी होने के नाते इस तरह की दृष्टि में रखता हूँ। प्रेमचंद जी ने और जयशंकर प्रसाद जी ने या उस समय के जितने भी महान कवि हुए, उन्होंने जो कुछ भी भापा समाज से और जो कुछ उन्होंने महसूस किया, आप प्रेमचंद जी का जीवन अगर देखेंगी तो उन्होंने ज्यादातर साहित्य अपने ही जीवन से प्रेरित होकर लिखा है, क्योंकि जो उन्होंने सहा है वो कहा है और जो समाज में देखा है वो कहा है। दूसरी बात क्या आ जाती है, जब साहित्य राजनीतिक हो जाता है तो वो साहित्य खत्म हो जाता है, क्योंकि साहित्य किसी की पैरवी और गुलामी नहीं कर सकता, न कविता कर सकती है, तारीफ कर सकती है, गुलामी नहीं कर सकती। तारीफ कैसे कर सकती है कि आप ये कहें कि चांद सा जब कहा उनको तो वो कहने लगे, चांद सा जब कहा उनको तो वो कहने लगे, चांद कहिए ना, चांद सा क्या है,
0: क्या बात है।
1: तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी आज के दौर, जो आपका क्वेश्चन है, मतलब कि आज कितने प्रतिशत शायर या कवि ऐसे हैं जो समाज, हर समय अपने आप एक चुनौती लेकर आता है और वो साहित्य में भी बदलाव बहुत जरूरी है। मैं ये कहूँ कि 90% साहित्य खत्म हो चुका है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हमको थोड़ी सी स्वतंत्रता इसलिए देनी पड़ेगी, जो आने वाली पीढ़ी है, जो अभी समय चल रही है, उसके पास ऑप्शंस बहुत हैं। अगर उन सारे ऑप्शंस के बावजूद भी अगर वो साहित्य में रुक ले रहे हैं तो थोड़ी सी उनके लिए मुझे लगता है कि एक विंडो इस तरह की खुली रहनी चाहिए कि उसमें ज्यादा बाउंडेशन इतनी नहीं रहे कि आप मीटर में नहीं है या आप कविता के दायरे में नहीं है। वो जो उनके भाव है वो उनको शब्द देने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका हमें आदर करना चाहिए।
0: तो मतलब आप इस बात से बिल्कुल अग्री हैं कि जरूरी नहीं है कि कविता को एक मीटर में ही लिखा जाना चाहिए, तभी वो एक परफेक्ट कविता।
1: देखिए, कविता और कवि हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है। जो भी महत्वाकांक्षी लोग हैं वो एक स्वतंत्रता में चाहते हैं अपने आप को। चार दीवारी में रहेंगे लेकिन खुद में स्वतंत्र रहेंगे, तो वो बहुत जरूरी है। तो

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: एक और सवाल है, तेज पोइट्री का एक अलग ही प्रेशर होता है और आजकल तो ओपन माइक्स में लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं, तो मेरा सवाल यही है कि जब आप ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं तो आप ये कैसे महसूस करते हैं कि कहीं उनकी वजह से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो अफेक्ट तो नहीं हो रही, कि सिर्फ आप उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में वो पोइट्री तो नहीं सुना रहे कि जो सिर्फ उनको ही समझ आए, तो ऐसा होता है आपके साथ?
1: होता है और अक्सर होता ही है,
0: होता ही है।
1: जो कवि सम्मेलन और मुशायरे जो संयोजक और आयोजक कराते हैं जिसमें ऑडियंस भी आती है, तो वहाँ हमको मूल कविता अगर हम साहित्य पूरा सुनाने लगेंगे तो लोग इतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे।
0: ओके।
1: क्योंकि लोग खुद एक तो इतनी जल्दबाजी में है, दूसरा उनके पास ऑप्शन भी बहुत है। अगर इस इतनी व्यस्तता के बाद भी अगर वो हमारे सामने बैठे हैं कुछ कविता के सुनने के लिए, तो हमारा भी दायित्व ये बनता है कि सिर्फ उनको सारी चीजें जो है ज्ञान की बताई जाए, कुछ उनके मन के हिसाब से मूड के हिसाब से कहकर, चार शेर आप उनके मूड के हिसाब से कहिए, दो शेर जो आपको अपनी बात कहनी है जो समाज के लिए प्रासंगिक है, जो समय के लिए प्रासंगिक है, वो आप कह सकते हैं। तो मेरा कहना है कि थोड़ा सा जैसे सैंडविच होती है, तो उसमें दोनों ब्रेड के बीच में जो आप वेजिटेबल डाल सकते हैं, तो इस तरीके का काम भी कर सकते हैं, या माला की तरह परो सकते हैं, सारे व्हाइट मोती जो सफेद मोतियों के बीच में दो चार सुनहरे मोती रख दें, तो उससे क्या है कि माला भी थोड़ा सा और अलग अंदाज में निखर के आएगी और मोतियों की भी सही स्थिति आपको वहां पर मिल जाएगी।
0: जी।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: आप बहुत कुछ लिखते होंगे, बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंस भी होते होंगे जिसके थ्रू आप लिखते होंगे, और आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज या कौन सी पोइट्री आपको पब्लिक तक पहुंचानी है और कौन सी अपने पास बचा के रखनी है, ये चीज कैसे डिसाइड करते हैं?
1: खुद तक बचाने की तो कोशिश ये है कि मैं मेरी हर आह को वह मिलती है जहाँ मैं खो जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ। तो ये चीजें हैं कि खुद तक अगर समेट कर रखेंगे तो फिर हम आजाद नहीं रह पाएंगे। और लोगों तक जुड़ना ये है कि हमारे ही शब्दों में अगर उनके गम मिल रहे हैं तो ये समझिए कि लोग हमारे साथ चल रहे हैं।
0: अच्छा, इस बात में कितना अग्री करते हैं कि जब कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छा कवि तभी बनता है, अच्छा शायर तभी बनता है जब उसका दिल टूटता है। तो जब लाइफ में बहुत सारे बहुत ज्यादा गम मिलता है तब आप बहुत बहुत अच्छा या डेप्थ में कुछ कह पाते हैं, इस बात से कितना अग्री करते हैं आप?
1: हाँ, इससे तो आपकी से 200% एग्री करना भी पड़ेगा क्योंकि कोई जो शायर और कवि इस धारा से नहीं भी है वो जब दिल टूटता है तो शायर उनके अंदर से निकल के आता है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि कविता और शायरी क्या है कि अंदर की वेदना को जब शब्द मिलते हैं, आदमी गद्य में अगर कहना चाहे सीधे सीधे जी मुझे दुख हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, वहां बात नहीं जमती, लेकिन जब उसको तालमेल मिल जाता है विचारों को तो कविता एक अपना सृजन कर लेती है अपने आप में। तो हर कवि, हर व्यक्ति अपने आप में कवि और शायर है, समय समय पर उसकी वेदनाएं उछाल कर अपने लफ्जों में आ जाती हैं तो वो शायर कवि बनता है। दूसरी बात जो आपने कही कि जब भी कोई प्रेम है, हमारा जो दिल धड़कता है उसी से सारी वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, या तो गम की हुई या प्रसन्नता की हुई। तो प्रसन्नता के लिए उतना गहराई तक आदमी नहीं जा पाता जितना गम में चला जाता है। तो गम से मतलब ये समुद्र मंथन है जिससे अमृत भी निकल आता है और भी कई सारे रत्न निकल आते हैं
0: जी।
1: तो मंथन बहुत जरूरी है।
0: एक और सवाल है, एक वक्त था जब लोग शायरी को सिर्फ सुनते नहीं थे बल्कि महसूस भी करते थे, लेकिन अब जो है सिर्फ लोग वायरल होने पर ज्यादा ध्यान देते हैं।

0: रहे।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने, वायरल होने की दौड़ में हम खुद भी खत्म होते जा रहे हैं। प्रोफेशन कोई भी हो, सिर्फ वायरल होकर और किसके कितने फॉलोवर हैं हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं बजाय उसकी कविता या बजाय उसके काम को जाने हुए। तो ये जो दौर तकनीकी का चल रहा है इसमें हर आदमी इतना स्पीड में भाग रहा है कि उसको इतना समय नहीं दे पा रहा है कि 30 सेकंड से ज्यादा मैं किसी शायर या कवि को या किसी व्यक्ति को सुन सकूं। दूसरा, वायरल होने की जो होड़ है या वायरल होने की जो ग्लोरीफाई चीजें कर दी गई हैं उससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पर खतरा भी हो सकता है, क्योंकि जो मूल साहित्य है वो समय लेगा और समय जो पकने में लेता है वो फिर बिकने में समय लेता है, तो चीजें थोड़ी सी मैटर।
0: अच्छा, साहित्य की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है?
1: खूबसूरती ये है कि आप हर किसी से आप मित्रता कर सकते हैं बजाय किसके कि आप अपने शब्दों से उसका मन जीत सकते हैं, उसका मन हल्का कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप किसी के मन को हल्का कर सकते हैं अपने शब्दों के द्वारा तो ये सबसे बड़ी पूजा है, आपको कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है।
0: जी, और इस चीज में आप कितना अग्री करते हैं कि अगर एक पोइट खुद लिखता है और वो बहुत अच्छा खुद रिसाइट करना भी जानता है तो और खूबसूरती बढ़ जाती है कविता की?
1: हाँ, अगर हम 50 शेर ऐसे लिखते हैं तो शायर को खुद अंदाजा हो जाता है कि 2-3 शेर मैंने ऐसे लिखे हैं जो उस गहराई तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि शायर या कवि निरंतर हम साहित्य को पढ़ते भी रहते हैं। आज का जो साहित्य उसको भी पढ़ रहे हैं, जो पुराना साहित्य उसको भी पढ़ रहे हैं, तो जब हम दोनों के बीच में होते हैं तो खुद का
0: क्या डिफरेंस महसूस करते हैं दोनों साहित्य?
1: डिफरेंस थोड़ा सा गहराई का रहता है और थोड़ी सी जो आज के समय में जो शायरी आ रही है उसमें तुकांत बनाने पे ज्यादा फोकस है कि राइमिंग बन जाए, मेरा काम हो जाए। तो सिर्फ राइमिंग इसका एक खूबसूरत मतलब भाग हो सकता है, लेकिन जो उसका मूल है, जो उसकी जो गहराई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो बरकरार रहेगी तभी शेर लंबा चलेगा, तभी आप जीवंत रहेंगे।
0: जी।

0: एक और सवाल है, अच्छा क्या ज्यादा पसंद है अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं तो, ओपन माइक या काव्य गोष्ठी की तालियां, या ऐसे कमरे में बैठकर अकेले कुछ गहरी लाइंस लिखना खुद के लिए या किसी के भी लिए, क्या ज्यादा पसंद होगा?
1: देखो पसंद की तो बात ऐसी, एक तो आपने ओपन माइक या कवि सम्मेलन में डिसाइड कराइए और या फिर आपने एक कमरा दे दिया तो कमरा तो जैसी बात है कमरे से ही सारी चीजें निकलती है, जो ओपन माइक तक जाएंगी या कवि सम्मेलन तक जाएंगी, तो सबसे पहले तो उस कमरे को तवज्जो देंगे। उसके बाद बात रही कवि सम्मेलन और मुशायरे की, मेन क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, तो ओपन माइक में चीजें मैं ये कह सकता हूँ कि शुरुआती दौर में जो नए कवि हैं कलमकार हैं वो खुद का मूल्यांकन करने के लिए, खुद को तराशने के लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं, और वहां भी सबसे बड़ी बात क्या होती है, वहाँ ऑडियंस नहीं होती, वहाँ सारे लोग शायर या कवि होते हैं, तो आप उनके बीच में पढ़कर और उनके कलामों को सुनकर ये पता लगा सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं।
0: अच्छा क्या डिफरेंस है, जैसे अगर मैं बात करूं मुशायरे की, जहां लोग आते हैं वो जानते नहीं है शायद उस फील्ड के बारे में या स्पेसिफिक लिटरेचर के बारे में, जस्ट वो आपको सुनते हैं और फील करके उनको अच्छा लगता है शायद, और जैसे हम ओपन माइक की बात करें, जैसे अभी आपने कहा कि वहां पर सब लोग जानते हैं, वो सब पोइट ही होते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस लगता है?
1: डिफरेंस एक तो ऑडियंस का हो गया, दूसरा जैसे आपने कहा पॉपुलैरिटी और फेम, तो इसमें क्या होता है जब चौराहे सर या गली मोहल्ले के लोग हमें सुनने आते हैं तो वो हमें नहीं सुनने हैं, वो भाषा को सुनने आ रहे हैं, भाषा के सृजन को सुनना आ रहे हैं, साहित्य को सुनने आ रहे हैं, तो साहित्य के प्रेमियों की हमेशा हम आदर करते हैं क्योंकि हम साहित्य से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे नाम पर आ रहे हैं वो, हमें इतनी इतनी खासियत नहीं है कि हम इतने लोगों को इकट्ठा कर लें आप। और दूसरा जो ओपन माइक है, ओपन माइक में चीजें क्या है, थोड़ा सा रिकॉर्ड, क्योंकि तकनीकी दौर है तो वीडियो का भी जमाना है, ऑडियो का भी जमाना है, और उसको शूटिंग करके अपनी अपनी पोर्टल्स पर डालने के लिए, तो वो भी एक जरिया हो गया अपने शेर को लोगों तक डायरेक्ट पहुंचाने का, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल पर अपना समय बिताते हैं, तो डिफरेंस मेन यही है कि वहां पर जो लोग आते हैं वो अपना पूर्णतः समय देते हैं साहित्य के लिए, साहित्य के प्रेमी हैं, और हर तरह से उनको एक समय निकाल कर आते हैं, तो उनकी हमेशा जो है कद्र रहती है, साहित्य ऐसे लोगों से ही जिंदा है। ओपन माइक ही सारे हो जाएंगे तो साहित्य नहीं रह पाएगा, साहित्य के लिए काव्य गोष्ठियां बहुत जरूरी है। ओपन माइक तो ये कह सकते हैं कि एक वार्म अप है, उसके बाद आप मैदान में जा सकते हैं।
0: क्या बात है।

0: अब इम्पॉर्टेंट टास्क पर आते हैं, बिकॉज इतनी सारी बातें आपसे हो गई हैं और हमारे जो लिसनर्स हैं जो अभी हमें सुन रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आपने अभी कितनी खूबसूरत रचनाएं जो हैं वो लिखी हैं, तो कुछ ऐसी रचनाएं जो आज आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहें तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे।
1: जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा भी और इतना लंबा सफ़र हमने जो वार्तालाप में पूरा किया है, तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि कितना मुश्किल है तजुर्बे की आबरू रखना। मैंने आपके सारे सवाल के जवाब दिए लेकिन हाँ फिर भी बहुत कुछ रह गया जो मैं नहीं कह पा रहा। तो शेर आप पकड़ने की कोशिश हाँ करें कि कितना मुश्किल है तजुर्बे की आबरू रखना, जितना सहा है उसको हुबहू रखना।
0: क्या बात है,
1: जितना सहा है उसको खूब हुबहू रखना। और शेर बतौर खास कि किरदार चंदन सा रखना भी तो खेल नहीं, किरदार चंदन सा रखना भी तो खेल नहीं, मुश्किल है अजगर लपेट कर खुशबू रखना। तो ये अजगर मेरा मानना है कि तकनीकी दौर के वो अनछुए कारनामे हैं जिनमें व्यक्ति विजी है, लेकिन फिर भी जो ओरिजिनलिटी जो मूल है वो चंदन की तरह अपनी खुशबू बिखेरता ही रहेगा, साहित्य बिखेरता रहेगा।
0: जी क्या बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जाते हुए कोई और एक गजल जो हम जरूर सुनेंगे आपकी?
1: जी मैं एक गजल के दो शेर और पढ़ता हूँ कि आजकल बेमूल बिक रहा हूँ मैं, आजकल बेमूल बिक रहा हूँ मैं, हाँ तेरी दास्तान इश्क लिख रहा हूँ, हाँ तेरी दास्तान इश्क लिख रहा हूँ मैं। और बड़ा शेर इसमें ये है, जिंदगी का फलसफा बांधने की कोशिश की है, हाँ तेरी दास्तान इश्क लिख रहा हूँ मैं, ख्वाहिशें जरूरतों से कब आजाद होंगी। जिंदगी इसी बीच में है, ख्वाहिशें जरूरतों से कब आजाद होंगी, जिंदगी तेरे बोझ से थक रहा हूँ मैं। पूरी जिंदगी निकल जाती है लेकिन हम ये तय नहीं कर पाते, हमारे जो कदम हैं वो चाहते हैं पर चाहते हैं कि ख्वाहिशों के आसमान में उड़ें, लेकिन जरूरतें कदम की बेड़ी बन जाती है।
0: जी
1: इसके बीच का सफर जिंदगी रहता है।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आपकी रचना है। अभी मुझे लगता है कुछ और कहना भी चाहते हैं।
1: मैं तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही अच्छा मुक्तक मैंने ताजा लिखा है, बिल्कुल आपके ही लिख कर ले गया था।
0: बिल्कुल,
1: कि मन्नतों के ये धागे तुम्हारे लिए, रात भर हम थे जागे तुम्हारे लिए, रुखसती से तो तुम चढ़ गए सीढ़ियां। अब शेर देखिए कैसे पलटता है, रुखसती से तो तुम चढ़ गए सीढ़ियां, हम थे कितने अभागे तुम्हारे लिए।
0: क्या बात है,
1: मतलब इसमें ये कोशिश की है कि मतलब मेरे हट जाने से उसको तरक्की मिली है, मैं इतना अभागा था।
0: जी
1: तो जो दौर की आजकल जो केस आ रहे हैं उसके उसमें भी ये प्रासंगिक बैठता है। मुझे ही किनारा करने के बाद तुझे तरक्की मिलेगी।
0: क्या बात है, बहुत
1: मेरी सारी कोशिश रही कि तुझे तरक्की कराऊं।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। जाते हुए आपका एक मैसेज जो हम अपने लिसनर्स तक जरूर पहुंचाएंगे।

0: कैसे जाती है, प्रेजेंटेशन कैसी होती है।
1: हाँ हाँ।
0: मैंने बहुत सुना है हर कवि को, हर मुझे लगता है आजकल जितने भी कवि और शायर हैं, दुबई मुशायरे से लेकर और आपके लाल किला के कवि जितने भी हैं, मैंने उनकी एक एक कविताओं को चार चार बार भी सुना है।
1: क्या बात,
0: क्यों? क्योंकि मुझे उनके हर एक अंदाज को सुनकर महसूस करना, ऑब्जर्वेशन करना, तो वो बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात क्या है कि जैसे आप नए कवि हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात, जैसे जो कुछ भी आपके अंदर आ रहा है उसको शब्द देते रहिए। ये मूल्यांकन मत कीजिए यार ये पंक्ति तो बहुत छोटी है, ऐसा ऐसा तो नहीं होता। अपना मूल्यांकन करने के लिए आप बड़े कवियों की जो साहित्य है उसका सहारा लेंगे तो ज्यादा महत्वपूर्ण है
1: जी।
0: तो जो भी अंदर आ रहा है उसको शब्द देते रहिए। लिखना महत्वपूर्ण है, बाजार में निकलना कम।
1: क्या बात है,
0: लिखना ज्यादा में लिखते रहोगे तो आप जिंदे रहोगे अगर आपके अंदर ये चीज है तो।
1: जी जी, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए, थैंक यू।
0: बहुत बहुत आभार मैम आपका
1: जी। और लिसनर्स आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, मैं हूँ गीत रेडियो महारानी से, और आज मेरे साथ स्टूडियो में है एक ऐसे एक्टर जिन्होंने टेलीविजन और सिनेमा में बहुत सारे मेमोरेबल कैरेक्टर्स को अपनी एक आइडेंटिटी दी है, और आज की जो कॉन्वर्जेशन है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कैरेक्टर की कहानी नहीं बल्कि फेथ, फैमिली, डिवोशन और एक इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सप्लोर करती है। मैं बात कर रही हूँ हनुमान अंश के बारे में, जहाँ मनीष चौधरी जी, जो अभी मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, अपना एक बहुत ही खूबसूरत सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। दुर्गा प्रसाद जी के रोल में है ये, और जो कि नीम करौली बाबा के फादर हैं। तो सर, आज आपसे बहुत सारी बात करने वाले हैं, क्या आप तैयार हैं?
1: जी, सीताराम मैम, सीताराम सबको, सब खुश रहे। मेरा नाम मनीष चौधरी है, मैंने बाबा नीम करौली जी के पिताजी श्री दुर्गा प्रसाद जी का कैरेक्टर किया है
0: जी,
1: और धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
0: जी सर, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं आपसे बात करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, आपको जब ये रोल ऑफर हुआ था उस वक्त क्या रिएक्शन था आपका, एग्जैक्टली क्या वो मोमेंट क्रिएट हुआ जब आपके पास ये रोल आया?
1: मैम जी, 3rd of November 2025
0: जी,
1: शाम को मैं ऐसे ही, मेरी नॉर्मल दिनचर्या थी, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो एकदम से इसकी अभिषेक की कॉल आई मेरे पास। अभिषेक जो है उनका कास्टिंग देख रहे थे फिल्म का
0: जी,
1: लेकिन प्लस वो अदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थे, लेकिन वो मुझे पहले से जानते थे कास्टिंग के लिए, पहले भी मैंने काम किया हुआ था उनके थ्रू
0: जी।
1: तो उनको एक चाहिए था ऐसा कैरेक्टर जिसकी एज 35 to 40 हो, जिसे ब्रिज लैंग्वेज आती हो।
0: ओके जी,
1: हाँ जी, तो ये दोनों ही क्राइटेरिया मेरे को मैच कर रहे थे, एज भी मेरी उसी में फॉल कर रही थी, और मुझे ब्रिज भी आती है क्योंकि मैं वृंदावन से ही हूँ, मथुरा से ही हूँ। चलो इस पे तो ओके हो गया। अब बात आती है ऑडिशन की, तो उन्होंने मेरे से ब्रिज लैंग्वेज में एक ऑडिशन बनवाया, तो ये तुरंत बना के भेज दिया और तुरंत मेरा क्लियर हो गया, विद इन 15 to 20 मिनट्स मेरा क्लियर हो गया और उन्होंने मुझे बुला लिया। बात शाम को 7-8 बजे के आसपास की है, ट्रेन मेरी मिस हो चुकी थी, चित्रकूट जाना था मुझे, पूरा रिसर्च किया कैसे जाऊं, पापा से बात करी, तो अभिषेक के थ्रू ऋषि से बात हुई थी, तब जाके ये मेरा सब कुछ प्रोसेस हुआ था। तो अगले दिन मैं शाम को पहुंचा, पहुंचना सुबह था, लेकिन बस की पुअर बस सेवा की वजह से मैं शाम को पहुंचा, फिर शाम को देखा तो वहाँ माहौल कुछ और था, मैंने सबका मूड भांप लिया था, विशाल सर का तो भांप ही लिया था मैंने, वो थोड़े से अपसेट थे।
0: अच्छा जी।
1: हाँ, वो अपसेट इसलिए थे क्योंकि सीन दिन में होना था, बिकॉज ऑफ द पुअर सर्विसेज एंड सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, गाड़ी खराब होना, फिर दूसरी बस पकड़ना, दूसरी बस बहुत ही स्लो चल रही थी, हर स्टॉप पे रुकती हुई जा रही थी, 35-40 की स्पीड से ऊपर नहीं जा रही थी, 6-7 घंटे बाद मुझे पहले तो एक बस खराब हुई थी, फिर उसके बाद दूसरी बस मिली थी, वो उसको मैंने 6-7 घंटे बाद चेंज किया, मैं ट्रक में गया आगे ड्राइवर के साथ बैठ के, बट टेंशन यही थी कि यार मैं लेट हो गया, कहीं निकाल लेते मुझे। हाँ, लेट हो गया, तो मैंने कोशिश करी मैं जितना जल्दी पहुंच सकता हूँ, रेगुलर मैं टच में था ऋषि से,
0: हाँ जी,
1: और अभिषेक से, जैसे तैसे पहुंचा, बहुत ही मतलब पहुंचने के बाद सबका मूड देखा, विशाल सर ने तो जाते ही मुझे स्किप पकड़ाई, फिर मतलब कर दिया वो सीन। अब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बाबा नीम करौली की स्टोरी पे बेस है ये, या मैं क्या कैरेक्टर करने वाला हूँ, बस स्क्रिप्ट दे दी, कॉस्ट्यूम पहना, उसके बाद तो बस मैंने कर दिया, बहुत अच्छा किया मैंने, मुझे इस चीज का गर्व है, मैंने बहुत अच्छे से वो पोर्ट्रे किया है, बहुत अच्छा सीन क्रिएट किया है मैंने, और सर ने तारीफ भी की, जैसा वो चाहते थे वैसा कर दिया मैंने। और जब ये किया मैंने, तो बाद में मुझे पता चला मेरे गोपाल जी, शोभिनव जो है वो सेकंड एडी भी का भी काम कर रहे थे, वो एक्टर तो थे ही, मेन एक्टर थे
0: जी, जी।
1: मुझे नहीं पता था ये चीज।
0: ओके।
1: मुझे अगले दिन पता लगा जब मेरा उनके साथ सीन था।
0: ओके।
1: जिसमें मैं उनको लेने जाता
0: हूँ। हाँ, जी जी।
1: तब वो सीन था अगले दिन, तो उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया, तब जाके मुझे पता चला कि मैं ऐसे स्टूडेंट हूँ, बट आई वॉज नॉट के जैसे बाबा जी पे मैं
0: प्रिपेयर नहीं थे पहले।
1: हाँ, प्रिपेयर नहीं था, बाबा जी का मुझे आइडिया नहीं था।
0: हाँ।
1: मैं कभी फॉलोअर नहीं रहा हूँ उनका।
0: ओके।
1: मैं इस फिल्म के बाद ही,
0: अच्छा जी,
1: जो ये सब मिरेकल्स हुए मेरे
0: साथ, पहले आप कभी गए भी नहीं?
1: नहीं, कभी नहीं गया।
0: ओके।
1: मैंने बाबा जी के जो फिल्म के साथ जो मिरेकल्स हो रहे हैं ना, तब मेरा बिलीव हुआ कि हाँ सच में ऐसी पावर, ऐसी एनर्जी एग्जिस्ट करती है।
0: जी जी, बातें चल रही हैं मनीष चौधरी जी से, जो कि फिल्म हनुमान अंश में एक्टर है। तो अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है खास मुलाकात।

रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है खास मुलाकात। मेरे साथ मनीष चौधरी जी जुड़े हुए हैं जो कि फिल्म हनुमान अंश में एज एन एक्टर काम कर रहे हैं। चलिए, आपको रोल भी मिल गया, आपने बहुत अच्छा फील भी किया जब आपने इस फिल्म में काम किया, लेकिन इस कैरेक्टर को बहुत डीपली समझने के लिए आपने क्या क्या रिसर्च, आपने डेफिनेटली कुछ भी रिसर्च नहीं किया आपने उनके बारे में?
1: देखिए मैम, मैं थिएटर भी किया है और थोड़ा बहुत काम भी कर रखा है, तो मुझे एक्टिंग की सेंस तो है थोड़ी। बस ये था, हर एक एक्टर का क्या होता है कि जब वो कॉस्ट्यूम पहन लेता है ना एक बार, तो कैरेक्टर अपने आप अंदर से निकल जाता है। नॉट ओनली विद मी, एवरी गुड एक्टर्स, सबके साथ यही होता है
0: जी।
1: और सब फिर कॉस्ट्यूम होने करने, कॉस्ट्यूम पहनने के बाद सब अच्छा कर देते
0: हैं,
1: इसमें कोई डाउट नहीं। चाहे पुलिस, डॉक्टर, कोई इंजीनियर हो, बाबा हो, बच्चा हो, सब कर देते हैं। मैंने भी उसी भाव से किया था कि फादर का कैरेक्टर है। अब यही बात ये कि फादर के लिए मुझे किसको इमेजिन करना था। एक तो ब्रिज बोलनी है, गुस्सा भी दिखाना है, प्यार भी दिखाना है, कंसर्न भी दिखाना है, और थोड़ा इमोशंस भी है। इमोशनल हूँ मैं, अपने बेटे को 15 साल बाद देने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने अपने अंदर उतार लिया अपने फादर साहब को।
0: मैं यही बोलने वाली थी।
1: मैंने अपने पिताजी को वो किया, अंदर लेके फील किया, तो उसी को मैंने सामने किया, मेरे पापा कैसे करते हैं गुस्से में।
0: हाँ जी, हाँ। अच्छा, अपने फादर को आपने एग्जैक्टली वहाँ पर, ओके ओके जी। तो जब आपके घर वालों तक ये बात गई कि आप एक इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा हो रहे हैं, तो उनके रिएक्शंस क्या थे जब आप वापस गए अपने घर और उनसे बात किया, उन्होंने फिल्म देखी, तो उनके रिएक्शंस कैसे थे?
1: देखिए, दो चीजें हैं। पहले तो फिल्म कर दी,
0: हाँ,
1: तो मुझे भी नहीं आ गया था कि फिल्म इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी बन जाएगी।
0: हाँ जी,
1: मैंने अपने पेरेंट्स को तो वही नॉर्मली बताया था कि शूट करके आया हूँ, मुझे नहीं पता शूट के बाद क्या होने वाला है। वो मेरे पेरेंट्स ऐसा है कि आर्मी बैकग्राउंड से हैं फादर, उनको एक्टिंग की कोई नॉलेज नहीं है,
0: बट वो सपोर्ट तो करते हैं आपको।
1: कोई सपोर्ट नहीं करता।
0: अच्छा,
1: एक्चुअली क्या है, मैं जॉब करता था, तो जॉब छोड़ना उनके लिए लगा कि ये इसने लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी है, क्योंकि 15-16 साल और एक कंपनी में 9 साल काम किया, फिर उसके बाद 5-6 साल और किया, तो 15-16 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था
0: जी।
1: अगर मैं वो करता रहता तो मेरी अच्छी सैलरी होती, लेकिन मैं खर्चे मैनेज नहीं कर पा रहा था अपने, क्योंकि एक्टिंग लाइन में आ गया था, जॉब छोड़ चुका था, सर्वाइविंग के लिए थोड़ा बहुत निकलता रहता था। तो यही उनका टेंशन था कि ये गलत कर दिया इसने, नहीं करना चाहिए
0: जी।
1: लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई है, अब दे आर हैप्पी।
0: ओके,
1: कहते ना लाइफ ऑल ऑफ सडन चेंज।
0: देखी सबने,
1: कल भी मैं पूरी सोसाइटी को दिखा के लाया।
0: क्या बात है। तो अगर आपने अभी तक हनुमान अंश नहीं देखी है तो बहुत कुछ मिस किया है, जाइए फिल्म जरूर देखिए। फिलहाल वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है खास मुलाकात।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है, खास मुलाकात। मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं मनीष चौधरी जी, जो कि फिल्म हनुमान अंश का बहुत ही इम्पोर्टेंट सा हिस्सा रहे हैं। सर, एक और सवाल है, सेट पर जब आप अपने को एक्टर्स के साथ काम कर रहे थे तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी थी? ऑफ स्क्रीन भी इनफैक्ट कैसी बॉन्डिंग थी?
1: टाइम नहीं मिला इस चीज का, सीरियसली टाइम नहीं मिला। जब सीन कर रहे थे ना, विद गोपाल जी, शोभिना, वी वर वेरी गुड। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे, गोपाल जी ने, शोभिना, शोभिना जो मेन बाबा जी हैं, गोपाल जी जो बाबा जी के वो बने हैं, तो इन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे। विशाल सर ने, सबने मेरे को सपोर्ट किया, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत शांत प्यार से स्मूथली चल रहा था वहाँ पे।
0: हाँ जी,
1: कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ऊंची आवाज तक नहीं, कोई शाउट नहीं। सेट पे होता है चिल्ला चिल्लम चिल्ली होती है, यहाँ से क्रू आपस में चिल्ला चिल्ला के ये सब कर रहे होते हैं
0: जी,
1: वो होता है प्रोडक्शन में जब शूट चल रहा होता है, तो वो ऐसा कुछ नहीं था, स्मूथ चल रहा था सब
0: जी।
1: तो सबने अच्छा किया, एवरीबॉडी वाज डूइंग गुड, मेरा सब सबने सपोर्ट किया, सब अच्छा हो गया था
0: जी। तो अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: हर दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं होता, कुछ एल्युमिनियम के भी होते हैं, और कुछ के पीछे तो मौत लिखी होती है। राहुल और निधि नए घर की तलाश में, पर जो मिला वो एक मनहूस कहानी थी। एक हवेली जो सदियों से बंद थी और एक दरवाजा जो सालों से बंद था, शायद जाम हो गया था। जब उन्होंने उस दरवाजे को छुआ तो पूरी हवेली जाग गई, दीवारों से सांसें सुनाई देने लगी, दरी पर पैरों के निशान उभरने लगे, और फिर वो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर तुमने उन्हें खोला तो हो सकता है अंदर वाले तुम्हें बाहर ही ना आने दें।

0: यू सो वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स तक, हमारे फरीदाबाद के जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचाने. और जाते जाते क्या मैसेज है आपका हमारे लिसनर्स के लिए, डेफिनेटली जानूंगी मैं आपसे.
1: मैं एक मेरा फेवरेट एक सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं लोगों से ना एक बात कहना चाहता हूँ.
0: बिल्कुल सर.
1: जो गुरु जी होते हैं ना गुरु, उनका सम्मान करो. रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे.
0: बिल्कुल सर, डेफिनेटली थैंक यू सो वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे लोगों तक पहुंचाने के लिए. लिसनर्स, आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम. कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए.
1: सीताराम मैम.
0: सीताराम
1: सबको. सब खुश रहो, सब अपना ध्यान रखो और मेरी फिल्म जरूर देखो. मेरे लिए थोड़े अच्छे अच्छे शब्द बोलो यार, मैंने कैसा काम किया है जरूर बताना. थैंक यू.
0: थैंक यू सर.

0: यहाँ बाद मुझे मेरी मौत के पास ले जाना तुम त्रेता में।
1: राम के चरित्र में सबको अपने घर का अपने कष्टों का एक जवाब मिलता है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: फिल्मी फ्लेवर with Bollywood never stops,
5: with Bollywood never stops,
6: picture perfect music loaded।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: हाँ जी फरीदाबाद वालों, क्या हाल चाल है। मैं हूँ आरजी पलक और आप सुन रहे हैं फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी को छटके, जहाँ मूवीज, ओटीटी, सॉन्ग्स, ट्रेलर और फिल्मी दुनिया की इंटरेस्टिंग बातें आपका मूड सेट करेंगी। बातों को आगे बढ़ाने से पहले एक गाना हो जाए, इंजॉय कीजिए ये गाना। लौटूंगी फिर यही, मैं हूँ आरजी पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

अरे भाई साहब, जीपीएस भी मना कर रहा है, पुलिस भी मना कर रही है, फिर ये रॉन्ग यू टर्न लेने की इतनी जल्दी किस बात की है? जरा रुकिए, सोचिए, क्योंकि नेक्स्ट सीन हमेशा हमारे हिसाब

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, स्पाई फिल्म्स का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? गन्स, गैजेट्स, सीरियस फेसेस और हीरो जो हर सिचुएशन में एकदम परफेक्ट हो। लेकिन वाइब मूवी ने सोचा कि हम थोड़ा उल्टा करेंगे। जी हाँ, कुणाल केमो की डायरेक्शनल फिल्म वाइब एक गूफी स्पाई मूवी है जहाँ कॉमेडी और स्पाई एक्शन का इंटरेस्टिंग मिक्स देखने को मिलता है। और इस फिल्म में कुणाल केमो के करेक्टर यानी कि हार्दिक एक ऐसा बंदा है जो थोड़ा लेजी है, थोड़ा फुलिश भी है, लेकिन अंदर से काफी स्मार्ट भी है। और फिल्म की कास्ट की अगर बात करें तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। स्पर्श, वंशिका धिल, प्रीति जिंटा, यशपाल शर्मा और दिनेश लाल यादव जैसे एक्टर्स इस मैडनेस का पार्ट है भाई। और अगर इस मूवी का रिव्यू करें तो इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका गूफी ह्यूमर और फास्ट पेस्ड ट्रीटमेंट है। फिल्म अपनी सिलीनेस को सीरियसली नहीं लेती और इसी की वजह से कई सीन्स काफी फनी फील होते हैं। बीच बीच में किल बिल और मैट्रिक्स जैसे फिल्म्स के रेफरेंस भी मिलते हैं। और ओवरऑल अगर मैं 5 स्टार्स में से इसकी रेटिंग देना चाहूं तो मैं इसको 3 स्टार्स दूंगी। एक लाइट गूफी एंटरटेनर के तौर पर इस फिल्म को ट्राई किया जा सकता है। और हाँ, एंडिंग में जो हुक छोड़ा गया है ना इस मूवी में, उससे सीक्वल की पॉसिबिलिटी भी नजर आ रही है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यही लौटूंगी ओनली 89.6 रेडियो महारानी पर।

0: हेलो, मैं डॉक्टर आकिब हूँ। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद से। सो मेंस हेल्थ के बारे में क्या आपको इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए? जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि जब 40-45 की एज के बाद में एक ईयरली आप हेल्थ पैकेज कर लें अपना, जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम कॉमन ब्लड टेस्ट आते हैं, किडनी रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड और बाकी ऑर्गन्स रिलेटेड, इवन हार्ट एंड अदर थिंग्स, वो सारा कर लेना चाहिए, जिसमें बेसिकली CBC, KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, अल्ट्रासाउंड, ECG एंड समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड एंड एक्सरे हो जाना चाहिए। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: What's up, dog? Shit, brother, chillin' in the wind. What's good with it? Watch out, man. Watch out, Dil G coming, man.
3: Oh, word. They say he the goat. He all the way down here.
2: Yeah, dog. He killing again.
3: Oh, Dil G, Dil G. Watch out,
4: watch out. Damn it, I'll get all the toll down. Jinnah, tera paar gori hai.

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, एज गैप रोमांस सुनते ही यूजुअली दिमाग में एक ही थॉट आता है ना कि भाई ये स्टोरी हैंडल कैसे होगी, लेकिन विश्वनाथ एंड सन्स इसी कॉम्प्लिकेटेड सेटअप को काफी सिंपल और क्लीन तरीके से प्रेजेंट करती है। फिल्म में सूर्या प्ले कर रहे हैं 42 ईयर ओल्ड संजय विश्वनाथ का करेक्टर, जो शादी और फैमिली से दूर रहना चाहता है, लेकिन उनका डिसीजन होता है कि उन्हें सैरोगेट फादर बनना है। और कहानी तब अपना टर्न लेती है जब बेबी की बायोलॉजिकल मदर 22 ईयर ओल्ड मैडी उनकी लाइफ में आती है और धीरे धीरे दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप होने लगती है। और रिव्यू के मुताबिक फिल्म की सबसे स्ट्रॉन्ग बात है कि ये एज गैप रिलेशनशिप को अननेसेसरली अनकंफर्टेबल बनाने के बजाय डिग्निटी और सेंसिटिविटी के साथ हैंडल करती है। और सूर्य और ममिता बाईजू की केमिस्ट्री भी फिल्म को सपोर्ट करती है और इसका फर्स्ट हाफ काफी स्मूथ और फील गुड है, लेकिन वहीं सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी वीक पड़ती है। कुछ फाइट्स और सॉन्ग्स अननेसेसरी लगते हैं और म्यूजिक भी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाता, लेकिन एंडिंग सेंसिबल और सेटिस्फाइंग है और ओवरऑल फिल्म को 3 स्टार्स मिले हैं। तो अगर आपको लाइट फैमिली ड्रामा के साथ एक अनकन्वेंशनल लव स्टोरी देखनी है तो विश्वनाथ एंड सन्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

दोस्तों कैप्सूल में सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका टीजर आते ही सवाल उठ गया है, ये नई नवेली दुल्हन है या कुछ ज्यादा ही सुपर नेचुरल। यामी गौतम लेकर आ रही है नई नवेली, जहां वो बनी है मोहिनी, एक न्यूली वेड ब्राइड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घरवालों को उस पर डायन होने का शक है। टीजर में हॉरर, फैंटेसी और डार्क कॉमेडी का एक ऐसा मिक्स दिख रहा है कि कहानी जितनी नॉर्मल शुरू होती है उतनी ही ज्यादा वियर्ड हो जाती है। मतलब शादी के बाद आमतौर पर एक ही सवाल होता है, खाना बनाना आता है, पर यहाँ सवाल है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है। अब बात करते हैं फिल्म कब आने वाली है। नई नवेली 16 अक्टूबर को सिनेमाज में आने वाली है। अब यामी का ये नया अवतार ऑडियंस को कितना सरप्राइज करने वाला है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, जब कोई गाना रिलीज होता है और हम उसको सुनते ही समझ जाते हैं ना कि हाँ भाई, ये शादी और पार्टी प्लेलिस्ट में एंट्री लेने वाला है, और ऐसा ही कुछ वाइब दे रहा है सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट का नया सॉन्ग ठुमक ठुमक। और इस सॉन्ग में तमन्ना का डार्क ब्लू लहंगा चोले लुक और उनके डांस मूव्स ने ऑलरेडी अटेंशन ग्रैब कर ली है। वहीं सिद्धार्थ भी अपने एनर्जेटिक डांस स्टेप से फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और सॉन्ग को बॉस्को मार्टिस ने कोरियोग्राफ किया है। वही म्यूजिक दिया है तनिष्क बख्ची ने, और वोकल्स हैं देव नेगी और अकासा सिंह की। ओवरऑल ठुमक ठुमक एक प्रॉपर कलरफुल एनर्जेटिक पार्टी ट्रैक है, और इसकी बीट सुनते ही ना आपको डांस करने की ना परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। और ये फिल्म 25th ऑफ सितंबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। और अगर आप भी इस मूवी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, तो मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर बता सकते हैं। नंबर है 9654896896। अब गानों की बात मैंने कर ही दी है, तो एंजॉय कीजिए ये गाना एंड स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स,
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स।
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

अच्छा, अगर किसी गांव में आज तक एक भी पुलिस केस ना हुआ हो तो ऑब्वियसली वहाँ सब कुछ बड़ा पीसफुल होगा ना। लेकिन एक सेकंड, दुपहिया सीजन 2 में धड़कपुर के ये पीस अब थोड़ी हिलने वाली है। पिछले साल ऑडियंस को अपनी सिंपलिसिटी और कॉमेडी से एंटरटेन करने वाली ये सीरीज अब नए सीजन के साथ वापस आ रही है और ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। और इस बार गांव में खेतों में मोबाइल टावर लगने की होड़ मच गई है। और बस इसी चक्कर में एक नया कॉन्ट्रोवर्सी खड़ा हो जाता है। मतलब जहां पहले क्राइम के नामों निशान नहीं थे, वहां अब ड्रामा फुल ऑन होने वाला है। गजराज राव, रेणुका शाह ने स्पर्श, भुवन अरोड़ा और यशपाल शर्मा के साथ इसी सीजन में भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ की भी एंट्री हुई है भाई। और ये सीजन 2 आपको देखने को मिलेगा 1 अक्टूबर अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो धड़कपुर में मोबाइल टावर लगेगा या नए लफड़े, ये तो सीरीज देखकर ही पता चलेगा। फिलहाल वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी को छटके पर।

पहली बार मैं ठीक नहीं हूं, ये सच सबको सुनाया था। और उस पल उसे समझ आया, मदद मांगना हार नहीं, अंधेरों से लड़ने वालों की ये सबसे बड़ी पुकार सही।

जाता है। कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दर्द छुपा रहे होते हैं। किसी का हाल पूछने में सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, लेकिन शायद वही कुछ सेकंड किसी की जिंदगी बदल दें।

खेत की मैंड छोड़ गए तेरे पाम भागे, पर बटिया पे निशान आज भी है। सूट पैंट गेर लिए दही पे मानस, पर तेरे मारा हुआ पगड़ी परेशान आज भी है। तेरे मारा हुआ पगड़ी परेशान आज भी है।

0: शर्नैक्सस
1: फिल्मी फ्लेवर।
2: अच्छा आपको तो याद होगा कि स्कूल या कॉलेज में जब कभी आपको स्टेज पर अवार्ड मिलता था तो आप तो खुश होते ही थे, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होती थी, क्योंकि यार वो मोमेंट ही इतना स्पेशल होता है ना, नाम अनाउंस होना, स्टेज पर जाना और सामने पेरेंट्स की आंखों में वो ये हमारा बच्चा है वाला मोमेंट, माय गॉड अमेजिंग। और कुछ ऐसा ही ब्यूटीफुल मोमेंट देखने को मिला यामी गौतम के साथ। 72वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स में यामी को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और जब यामी स्टेज पर अपना अवार्ड रिसीव कर रही थी तो उनके हस्बैंड आदित्य धर प्राउडली क्लैप करते हुए नजर आए और यामी ने अवार्ड रिसीव करने के बाद कहा कि वो अभी भी इस मोमेंट को फील करने की कोशिश कर रही हैं और नेशनल अवार्ड मिलना उनके लिए बहुत बड़ा ऑनर है। और सच कहूं तो अवार्ड जब मिलता है तो हमें तो खुशी होती है, लेकिन जब उसी चीज की खुशी हम अपनों के चेहरे पर देखते हैं ना तो वो मोमेंट डबल स्पेशल हो जाता है। चलिए इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर।

Hi, I am Dr. Nitish Dhiman. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Regular running overall body में सिर्फ cardiovascular pulmonary benefit के अलावा muscles, joint और आपके जो bones हैं उनके भी ऊपर भी काफ़ी फायदा देती है, क्योंकि running एक weight bearing exercise है तो बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस आता है तो वो बोन डेंसिटी मेंटेन करने में ओवरऑल हेल्प करता है। साइड बाय साइड जब रनिंग हो रही है तो मसल्स की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी इंक्रीज होती है, जो कि जॉइंट्स के आसपास मोबिलिटी हेल्प करती है इंक्रीज करने में और जॉइंट को स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करती है।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, हॉरर फिल्म देखते वक्त सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि इस फिल्म में जो भी भूत है उससे हम एक्चुअल में डरेंगे या नहीं, है ना? लेकिन अजय देवगन की नेक्स्ट सुपर नेचुरल फिल्म में कहानी सिर्फ डराने तक लिमिटेड नहीं होने वाली है, क्योंकि अजय देवगन एक बार फिर सुपर नेचुरल हॉरर जोन में वापस आ रहे हैं और उनकी अपकमिंग फिल्म का टाइटल रिपोर्टेडली लॉक हो चुका है, जिसका नाम है सूर्य स्पर्श। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित जुगराज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टोरी पूरी जो है ना वो गरुड़ पुराण से इंस्पायर्ड होगी। और आप तो जानते ही हैं कि गरुड़ पुराण में लाइफ, डेथ, कर्म और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जैसे सब्जेक्ट्स का जिक्र मिलता है। इस टाइटल से पहले इसका एक और टाइटल रखा गया था जिसका नाम था गृह प्रवेश, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने सूर्य स्पर्श टाइटल फाइनल किया है और ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट आना अभी बाकी है। और अजय देवगन का सुपर नेचुरल जोन कोई नया नहीं है, क्योंकि शैतान और काल के बाद अब देखना ये होगा कि इस मूवी में जर का लेवल कितना ऊपर जाता है। फिलहाल फिल्म की रिलीज में टाइम है, लेकिन इससे पहले अजय दृश्यम 3 और साथ ही साथ गोल

माल 5 में नजर आने वाले हैं। तो भाई अजय देवगन आ रहे हैं गरुड़ पुराण की कहानी लेकर। अब भूत से डरना है या उसकी पूरी स्टोरी से ही डरना है ये तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी।

अब बॉलीवुड में भी तैयारी फुल ऑन स्विंग मोड पर है, क्योंकि बप्पा जो आने वाले हैं और सेलिब्रिटीज के घरों में डेकोरेशन से लेकर आउटफिट तक सबका रिहर्सल चल रहा है। गणेश चतुर्थी इस साल 14 सितंबर को है और बॉलीवुड में हर साल की तरह इस बार भी बप्पा के स्वागत का एक्साइटमेंट काफी ज्यादा हाई है। शिल्पा शेट्टी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए गणपति सेलिब्रेशन एक प्रॉपर फैमिली ट्रेडिशन है। इको फ्रेंडली आइडल, ट्रेडिशनल लुक्स, फैमिली रिचुअल्स और फिर फुल ऑन ढोल वाला सेलिब्रेशन। लेकिन एक चीज इस बार थोड़ी सी अलग और बहुत प्यारी है। एक्टर स्वप्निल जोशी के घर गणेश उत्सव 76वें साल में पहुंच रहा है और इन्होंने फ्लावर्स और मिठाई की जगह लोगों से नई नोटबुक्स लाने की अपील की है, ताकि सेलिब्रेशंस के साथ एडुकेशन का भी मैसेज जाए। मतलब बॉलीवुड में इस बार बप्पा के लिए सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज भी तैयार है।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं ना कि जिनकी आवाज सुनकर हमारा मूड ऑटोमेटिकली बदल जाता है, और लकी अली की आवाज उन्हीं आवाजों में से एक है। अब एक बार फिर उनकी वही सोलफुल आवाज सुनने को मिलने वाली है दृश्यम द कंक्लूजन के अपकमिंग सॉन्ग मुस्कुरा दो में। सॉन्ग का टीजर रिसेंटली रिलीज हुआ है, जिसमें लकी अली की आवाज ही सिर्फ कुछ सेकंड्स की झलक ही ऑडियंस को एक्साइट करने के लिए काफी रही। इस गाने को लकी अली ने गाया है और लिरिक्स दिए हैं मनोज मुंतशिर ने, और म्यूजिक कंपोज किया है रोचक कोहली ने। और ये गाना फैमिली रिलेशनशिप्स और उनके बीच के इमोशनल बॉन्ड को सेलिब्रेट करता है। और हाँ, पूरा गाना अभी आने ही वाला है। कब आने वाला है ये तो सरप्राइज है यार, बाद में बताऊंगी। वही दृश्यम द कंक्लूजन आपको थिएटर्स में देखने को मिलेगी 2 अक्टूबर को। अब विजय सालगांवकर के फाइनल चैप्टर में क्या ट्विस्ट है ये तो फिल्म आने पर ही पता चलेगा, लेकिन एक बात पक्की है कि लकी अली की आवाज और दृश्यम की इमोशनल दुनिया, भाई कॉम्बिनेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का, एंजॉय कीजिए ये गाना एंड स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी। कुछ हटके कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

0: कुत्ती मेरी,
1: ओए होए के
0: कुत्ती मेरी,
1: ओए होए के
0: कुत्ती मेरी,
1: ओए होए।
2: फिल्मी फ्लेवर।
3: अच्छा, कॉलेज लाइफ भी कितनी मस्त होती है ना। एक क्रश हो, लेट नाइट पार्टीज हो और ऊपर से लव ट्रायंगल। भाई अटेंडेंस तो वैसे ही कम हो जाएगी ना इन सब चीजों के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वीर पहाड़िया की अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी प्रेम कीटाणु का ट्रेलर रिलीज हो गया है और स्टोरी है कॉलेज लाइफ, फ्रेंडशिप, लव और रिलेशनशिप की कंफ्यूजन से भरी हुई। और वीर फिल्म में विशाल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कॉलेज का बैक बेंचर है, क्लास बंक करता है, पार्टीज करता है और फिर सुहानी के प्यार में पड़ जाता है। लेकिन पिक्चर में एंट्री होती है अपार शक्ति खुराना के कैरेक्टर रंजीत की, जो सुहानी को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। और बस फिर क्या भाई, शुरू हो जाता है इनका प्रॉपर लव ट्रायंगल। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अपूर्वा सिंह कार्की ने और कास्ट में है आफिया सैयद, अपार शक्ति खुराना, राकेश बेदी और साथ ही साथ निखिल विजय भी। और ये मूवी आपको देखने को मिलेगी 2 अक्टूबर को थिएटर्स में। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसी दिन अजय देवगन और तब्बू की दृश्यम द कंक्लूजन भी रिलीज होगी। मतलब 2 अक्टूबर को थिएटर्स में सिर्फ लव का कंफ्यूजन नहीं, बल्कि ऑडियंस के पास मूवी चूज करने का भी कंफ्यूजन होने वाला है। और इस कंफ्यूजन को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। और इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का भी। एंजॉय कीजिए, ये गाना शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर। मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ।

0: कर गई चुल।
1: This is the social song.
2: रात के 2 बजे फोन आया, भाई अस्पताल आना पड़ेगा। सड़क पर हादसा हुआ था, खून चाहिए था।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: महाभारत की कहानियों में अगर किसी करेक्टर की बात सबसे ज्यादा होती है तो कर्ण का नाम जरूर आता है। और अब कर्ण की कहानी बड़े पर्दे पर एक नए अंदाज में देखने को मिलेगी। जी हाँ, साउथ सिनेमा के प्रोडक्शन हाउस पेन मूवीज ने महावीर कर्ण नाम की माइथोलॉजिकल फिल्म का अनाउंसमेंट किया था और अब फिल्म के लीड एक्टर को भी रिवील कर दिया गया है। इस एपिक सागा में राघव लॉरेंस कर्ण का कैरेक्टर प्ले करेंगे और मेकर्स ने उनका फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिया है। फर्स्ट लुक में राघव का वॉरियर अवतार काफी पावरफुल नजर आ रहा है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एज एन एक्टर ये उनकी पहली माइथोलॉजिकल फिल्म बताई जा रही है। और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे रमेश वर्मा और मेकर्स इसे नेक्स्ट ईयर पैन इंडिया रिलीज करने की प्लानिंग में हैं। राघव लॉरेंस को ऑडियंस कंचना फ्रेंचाइज और अपने एक्शन पैक्ड फिल्म्स के लिए जानती है। अब देखना होगा कि कर्ण के रूप में उनका ये नया अवतार ऑडियंस को कैसा लगता है। और इसी के साथ वक्त हो चुका है गाने का। गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

Hi, I am Dr. Nitish Diwan. I am presently working as a consultant and assistant professor of physical medicine and rehabilitation at Amrita Hospital, Faridabad. Warm-up at least 5 to 10 minutes minimum hona hi chahiye running se pehle. Usme aap brisk walk kar sakte hain, jogging kar sakte hain, gentle stretches kar sakte hain. Dusra point hydration ka hai. Hydration considering depend karega mausam kaisa hai, garmi kitni hai. पर्सन टू पर्सन वेरिएबिलिटी है, उनको स्वेटिंग कितना आता है. हाइड्रेशन के लिए ये भी चीज़ फोकस करना ज़रूरी है. ये सडनली कोई न्यू एनर्जी ड्रिंक्स या कोई और ट्रायल नहीं करना है. जो रूटीन में आपका हाइड्रेशन की स्ट्रेटजीज है उसी को फॉलो करें.

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जो कैरेक्टर हम घर बैठे टीवी या फोन स्क्रीन पर देखने के आदि हो गए हैं, अगर उन्हें बड़े पर्दे पर देखें तो कैसा लगेगा? मिर्जापुर द मूवी के बाद अब एक और पॉपुलर ओटीटी फ्रेंचाइज को फिल्म में लाने की प्लानिंग की बात सामने आ रही है, जिसका नाम है द फैमिली मैन। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक मनोज बाजपेयी का करेक्टर श्रीकांत तिवारी अब बड़े पर्दे पर भी नजर आ सकता है और मेकर्स के अकॉर्डिंग फिल्म बनाने का आइडिया पहले से ही डिस्कशंस में था, यानी इसका प्लान मिर्जापुर की मूवी की सक्सेस के बाद नहीं बना है, लेकिन उससे पहले फोकस रहेगा द फैमिली मैन सीजन 4 पर और इसका बेसिक स्टोरी बोर्ड रिपोर्टेडली रेडी है और सब ठीक रहा तो शूटिंग 2027 के बिगिनिंग में स्टार्ट हो सकती है। मतलब श्रीकांत तिवारी के नॉर्मल फैमिली मैन और सीक्रेट एजेंट वाले डबल लाइफ को थिएटर स्क्रीन पर देखना, ये आइडिया सुनने में ही काफी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल फिल्म को लेकर डिस्कशंस चल रही हैं और ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट आपको अभी करना पड़ेगा। और इसी के साथ वक्त हो चुका है एक गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है। मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: सो आई होप आपको मेरी बातें सुन के बिल्कुल नींद नहीं आई होगी, है ना। और मेरी नींद भी उड़ चुकी है, और इसी के साथ वक्त हो चुका है आज की फिल्मी फ्लेवर को शटर डाउन करने का। आज भी काफी सारी फिल्मी बातें हुई, कुछ नए अपडेट्स मिले, और रोज की तरह मेरी बकबक भी सुन ली आपने। लेकिन अब इस बकबक को पॉज देते हैं, अब मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो पता ही है ना यार, आज जाऊंगी तभी तो कल फिर से आऊंगी। मैं हूं आरजे पलक, और शो चल रहा था फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर। एंजॉय कीजिए ये गाना, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सुनते रहिए 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: क्लीन रहो।
1: हाँ, सोचो जरा उस नदी के बारे में जहाँ कल फिर कोई पानी भरेगा। जिस पानी से जीवन चलता है उसे गंदा करना कैसे भला। अगर बप्पा से प्यार है तो प्रकृति से भी प्यार रखो। उत्सव की खुशी मनाओ पर धरती का भी ख्याल।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

अच्छा, कभी कभी किसी को देखकर ऐसा लगता है ना कि इसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, भगवान का दिया इसके पास सब कुछ ही तो है। ऐसा लगता है कि मानो उसे सब कुछ मिल गया हो और किसी चीज की जरूरत ही ना हो। एक प्यारा सा घर, बचपन का साथ, करियर की उड़ान, बच्चों की खिलखिलाहट, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट, किसी लिखी हुई खूबसूरत फिल्म की तरह। लेकिन ये जो वक्त है ना, इसका पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। एक झटके में ये जिंदगी सब कुछ दे देती है तो छीन भी तो लेती है। जब चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा छा जाता है, तब ऐसा लगता है कि अब जीने की कोई वजह ही नहीं रही। पर क्या आप जानते हैं, उम्मीद की एक किरण, बस एक किरण, अक्सर वहीं से निकलती है जहां से हमने सोचना भी बंद कर दिया होता है। कोई अजनबी जिसे हम जानते तक नहीं, वो चुपचाप हमारी जिंदगी में आता है और बिना किसी शर्त के एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो खून के रिश्तों से भी ज्यादा लगने लगता है। आज की कहानी एक ऐसे ही कपल की है। ये कहानी है सिद्धांत और कल्याणी की, एक ऐसी दास्तान जो आपको हंसाएगी भी और आपकी आंखों में नमी भी लाएगी और आखिर में ये एहसास भी करा जाएगी कि इंसानियत और प्यार कभी खत्म नहीं होते। नमस्कार, मेरा नाम सपना है और आ गई हूँ आपको अपनी कहानियों की दुनिया में ले जाने, जहाँ आप, मैं और कुछ अनजान रिश्ते हमारे साथ पूरे एक घंटे तक बने रहेंगे। आज की मेरी कहानी दिलों को छू लेने वाली है और इस कहानी का शीर्षक है द डिलीवरी बॉय। तो बने रहिए मेरे साथ, ले चलूंगी आपको जिंदगी के एक अलग ही सफर पर, क्योंकि

डिलीवरी बॉय एक ऐसे कपल की कहानी है जो कि अपने जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को महसूस करता है और साथ जीता है। ये कहानी है सिद्धांत और कल्याणी की। उनकी लव स्टोरी किसी बॉलीवुड फिल्म जैसी फिल्मी नहीं थी, बल्कि बहुत ही सिंपल और रियल थी। दोनों ही मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते थे, इसलिए इनकी स्कूलिंग भी एक बहुत ही सिंपल ऑर्डिनरी से स्कूल में हुई। 9th-10th क्लास का वो दौर जब सुबह की असेंबली में एक दूसरे को चुपके से देख लेना ही दिन की सबसे बड़ी खुशी हुआ करता था। सिद्धांत हमेशा बैक बेंच पर बैठकर कल्याणी की लंबी चोटी देखा करता और कल्याणी को सिद्धांत का वो जरा सा बेपरवाह अंदाज बहुत पसंद आता था। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और धीरे धीरे दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों ने करियर की शुरुआत में बहुत स्ट्रगल किया। सिद्धांत ने एक प्राइवेट बैंक में क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से शुरुआत की, जहां दिन भर टारगेट का प्रेशर रहता था, और कल्याणी ने एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस में कंटेंट राइटर की जॉब ज्वाइन की। सैलरी कम थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। जब उन्होंने अपने अपने घरों में शादी की बात की तो शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाहट हुई, लेकिन दोनों की पक्की नीयत और सादगी देखकर दोनों परिवार मना नहीं कर पाए। आखिरकार उन्होंने अपने बच्चों को अपना आशीर्वाद दे ही दिया। शादी के शुरुआती दिन एक छोटे से किराए के मकान में बीते। वो दिन भी बड़े कमाल के थे। गर्मी के दिनों में छत का पुराना पंखा आवाज करता रहता था और दोनों एक ही स्कूटी पर ऑफिस जाया करते थे। बारिश के मौसम में जब स्कूटी रास्ते में बंद हो जाती तो दोनों परेशान होने के बजाय सड़क किनारे की टपरी पर कटिंग चाय पीकर हंस लिया करते थे और अपनी पुरानी दोस्ती को एक बार फिर से जी लिया करते थे। ये दोस्ती सिद्धांत और कल्याणी की जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट थी। अक्सर वो लोग जो प्यार करते हैं और शादी के बंधन में बंध जाते हैं, वो अपनी दोस्ती कहीं भूल जाते हैं, पर कल्याणी और सिद्धांत के साथ ऐसा नहीं था। जहां मौका मिलता ये दोनों दोस्त एक बार फिर से मिल जाया करते थे। मियां बीवी पीछे हो जाते थे और ये दोस्त मिलकर उस वक्त उस लम्हे को पूरी तरह से जिया करते थे। इन लम्हों में जिंदगी बहुत बाकी थी, तो चलिए इस बाकी की जिंदगी को भी जिएंगे, क्योंकि

आज का दिन कल्याणी के लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि सिद्धांत उसकी फेवरेट कलर की साड़ी जो उसके लिए लाया था, लाल रंग की साड़ी, कल्याणी का फेवरेट कलर था। सिद्धांत को बैंक में प्रमोशन मिला था, तो वो अपनी पहली बड़ी सैलरी से कल्याणी के लिए एक लाल रंग की साड़ी लाया और अपने लिए एक म्यूजिक सिस्टम खरीद कर लाया था। उस रात दोनों ने छोटी सी बैल्कनी में चाय पीते हुए देर तक कुछ गीत सुने और धीरे धीरे ये उनका डेली रूटीन बन गया। शाम होते ही कल्याणी की आंखें सिर्फ दरवाजे पर रहती, क्योंकि सिद्धांत के आते ही वो चाय पीते और बैल्कनी में बैठकर पुराने गीतों को सुनते और अपने प्यार को फिर से ताजा करते। वक्त बीतता गया और उनकी मेहनत रंग लाई। सिद्धांत बैंक में रीजनल मैनेजर बन गया और कल्याणी ने अपनी खुद की एक एडिटिंग एजेंसी स्टार्ट कर ली। उन्होंने गोमती नगर में अपना एक सुंदर सा 3 BHK घर भी खरीद लिया, लेकिन उनकी असली दुनिया तो तब पूरी हुई जब उनके घर में जुड़वा बच्चों की किलकारियां गूंजी। बेटे का नाम समीर और बेटी का नाम सानिया रखा गया। बच्चों के आने के बाद तो जैसे घर में हर दिन एक नया त्योहार हो गया था। सिद्धांत सुबह सुबह बच्चों को पार्क ले जाता, उनके साथ फुटबॉल खेलता और कल्याणी वो तो रसोई से उनके लिए कभी सैंडविच कभी पोहा ना जाने क्या क्या बनाती। घर के छोटे छोटे इंसिडेंट्स आज भी कल्याणी के जहन में बिल्कुल ताजा थे, जैसे समीर का पहली बार साइकिल से गिरना और रोने की बजाय सिद्धांत की तरफ देखकर हीरो की तरह मुस्कुराना, सानिया का कल्याणी की लिपस्टिक लगाकर पूरे मुंह पर फैला देना, या फिर हर संडे को चारों का मिलकर घर की सफाई करना और शाम को आइसक्रीम खाने बाहर जाना। समीर पढ़ाई में बहुत तेज था और सानिया को आर्ट्स और म्यूजिक का शौक था।

बड़े हो गए। जहां समीर ने इंजीनियरिंग पूरी कर ली, वहीं सान्या अपने आर्किटेक्चर के लास्ट ईयर में थी। पूरा परिवार बहुत खुश था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सिद्धांत और कल्याणी की उम्र भी अब लगभग 50 के पार पहुंच चुकी थी, पर आज भी वो शाम को बैल्कनी में बैठकर पुराने दिनों को याद करते थे। और एक गाना जो उनका फेवरेट था, उसे तो वो डेली सुना करते थे। चलिए इसी गीत को हम और आप भी सुन लेते हैं, पर वापस आइएगा जरूर, क्योंकि

कल्याणी और सिद्धांत दोनों की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी। अब वो रिटायर होने की तैयारी करने लगे थे। 50 साल की उम्र जो हो गई थी। बेटा समीर और बेटी सानिया। बेटे समीर की पढ़ाई पूरी हो गई और सानिया आर्किटेक्चर के लास्ट ईयर में थी। ये वो दिन थे जिसकी कल्पना अक्सर हर माँ बाप किया करते हैं। दूर से देखने पर ये फैमिली बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, और लगे भी क्यों ना, सब कुछ परफेक्ट जो था। पर शायद किस्मत को ये

शांत और कल्याणी जैसे जिंदा तो थे पर फिर भी जिंदा नहीं थे। कल्याणी ने बातचीत करना लगभग बंद कर दिया था। वो दिन भर सान्या के कमरे में बैठी रहती, उसकी किताबों और पेंटिंग्स को छूती रहती। सिद्धांत ने भी जॉब से प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया। उनकी हंसती खेलती जिंदगी एक काले साई में डूब चुकी थी। रिश्तेदारों और दोस्तों ने कुछ दिन तक तो सांत्वना दी, लेकिन धीरे धीरे सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। अब उस बड़े से घर में सिर्फ दो बूढ़े लोग और उनकी तन्हाई थी। साल दर साल बीतते गए। दोनों की उम्र 65 साल के पार हो चुकी थी। कल्याणी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, जिससे उसका चलना फिरना भी बंद हो गया, और सिद्धांत को भी बीपी और शुगर जैसी बीमारियों ने घेर लिया। वो कल्याणी जिसका लगभग आधा दिन किचन में बीता करता था, अब अपने लिए एक रोटी भी नहीं बना पाती थी। इसलिए सिद्धांत ने मोबाइल पर एक फूड डिलीवरी ऐप डाउनलोड कर लिया। वो हर शाम को हल्का पुल्का खाना, कभी खिचड़ी, कभी सूप या पतली रोटियां बाहर से ही ऑर्डर कर लिया करते थे। तभी उनकी जिंदगी में एक लड़के की एंट्री हुई। ये लड़का उनका बेटा नहीं था, ना ही कोई दोस्त और ना ही कोई रिश्तेदार, पर धीरे धीरे ये लड़का उनकी जिंदगी में बहुत अहम हो गया। कौन था ये लड़का, कहां से आया था और क्यों वो सिद्धांत और कल्याणी की जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट हो गया, ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।

0: इनके बीच सिर्फ सन्नाटा था। और तभी इनकी जिंदगी में एंट्री होती है एक खुशी की, और इस खुशी का नाम था नीरज। एक 22-23 साल का सीधा साधा लड़का। वो दिन में एक लोकल कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई करता और शाम को अपने पापा का इलाज कराने और अपनी फीस निकालने के लिए फूड डिलीवरी का काम किया करता था। एक दिन जब नीरज सिद्धांत के घर खाना डिलीवर करने आया तो उसने देखा कि दरवाजा खुलने में बहुत टाइम लग रहा है। सिद्धांत के दरवाजा खोलने पर नीरज ने नोटिस किया कि उनके हाथ कांप रहे थे और चेहरा भी बहुत थका हुआ था। नीरज ने बिना किसी फॉर्मेलिटी के बहुत ही अदब से कहा,
1: अंकल जी अगर आप कहें तो ये खाना मैं सामने टेबल पर रख दूं।
0: सिद्धांत ने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। अंदर जाकर नीरज ने देखा कि कल्याणी आंटी सोफे पर बैठी थी, लेकिन उनके सामने का जग बिल्कुल खाली पड़ा था। नीरज ने बिना हिचकिचाहट जग उठाया और किचन में जाकर उसमें पानी भर दिया। उस दिन नीरज की इस छोटी सी इंसानियत ने सिद्धांत और कल्याणी के सूने दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर दी। इसके बाद किस्मत का खेल देखिए कि जब भी सिद्धांत खाना ऑर्डर करते, इत्तेफाक से डिलीवरी नीरज को ही मिलती। धीरे धीरे सिद्धांत और नीरज के बीच छोटी मोटी बातें होने लगी। नीरज बहुत ही सलीके से बात करता था। वो आते ही पूछता,
1: आंटी जी तबीयत कैसी है आपकी, और अंकल आपने दवाई टाइम पर ली ना।
0: बातचीत का ये सलीका जल्द ही एक बहुत ही प्यारे से रिश्ते में बदल गया। अब नीरज सिर्फ खाना देने नहीं आता था, जब भी उसे डिलीवरी से थोड़ा फ्री टाइम मिलता वो 10 मिनट के लिए सिद्धांत के घर बैठ जाता। कभी वो घर आते वक्त रास्ते से कल्याणी आंटी के लिए शुगर फ्री मिठाइयां ले आता, तो कभी सिद्धांत के लिए अखबार। जब कल्याणी और सिद्धांत को ये पता चला कि नीरज दिन में पढ़ाई करता है और रात में काम, तो उनके दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट और प्यार और बढ़ गई। सिद्धांत ने अपने बच्चों के कमरों से कुछ कॉम्पिटिटिव बुक्स निकाल कर नीरज को दे दी। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। कल्याणी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसका बीपी अचानक बहुत लो हो गया था। सिद्धांत इतना घबरा गया कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से नीरज को फोन मिलाया। नीरज उस वक्त किसी और इलाके में डिलीवरी दे रहा था, लेकिन फोन सुनते ही वो सब कुछ छोड़कर 15 मिनट में सिद्धांत के घर पहुंच गया। पर पहुंचने से पहले ही वो एम्बुलेंस को कॉल कर चुका था। पूरी रात नीरज हॉस्पिटल में ही रहा। जब कल्याणी को होश आया तो उसने देखा कि सिद्धांत और नीरज दोनों एक साथ बैठे हैं। सिद्धांत इतना थक गया था कि उसने नीरज के कंधे पर अपना सिर टिका लिया था, और नीरज भी प्यार से सिद्धांत का हाथ सहला रहा था। ये देखकर कल्याणी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें लगा मानो ईश्वर ने उनके खोए हुए बच्चों का एक हिस्सा नीरज के रूप में वापस भेज दिया हो। क्या सचमुच ऐसा होता है, एक ऐसे शख्स में जिसे आप जानते भी नहीं आपको अपने बच्चे दिखाई देते हैं, अपनी पूरी दुनिया दिखाई देती है। जानेंगे ये आगे, क्योंकि

हॉस्पिटल से वापस आने के बाद बहुत कुछ बदल गया था। अब नीरज उस घर का डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि सिद्धांत और कल्याणी का बेटा बन गया था। वो तो अब घर के सारे काम करने लगा था, चाहे ग्रोसरी लाना हो, बिजली का बिल भरना हो या कल्याणी आंटी को डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए ले जाना हो। वो हर संडे को आकर घर का पंखा, फिल्टर सब कुछ साफ कर दिया करता था। बदले में कल्याणी आंटी भी उसके लिए अपने हाथों से कुछ न कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश करती। और सिद्धांत वो तो उसे पढ़ाई और करियर के टिप्स देते। नीरज ने भी कभी उनसे किसी पैसे या फायदे की उम्मीद नहीं रखी। उसके लिए वो दो बुजुर्ग इंसान उसका अपना परिवार बन चुके थे। समय किसी के लिए नहीं रुकता। 2 साल और बीत गए। एक दिन सर्दियों की सुबह सिद्धांत की तबीयत बहुत खराब हो गई। कल्याणी भी अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। सिद्धांत को एहसास हो गया था कि उनका अंतिम समय नजदीक है। उन्होंने अपने पुराने फैमिली लॉयर को घर पर बुलाया। कल्याणी और सिद्धांत ने आपस में बहुत सोच समझकर एक बड़ा फैसला लिया। उस दिन उन्होंने लॉयर के साथ बैठकर अपनी एक लीगल विल तैयार की। सिद्धांत का गोमती नगर वाला वो बड़ा सा घर, बैंक में जमा उनकी जिंदगी भर की सेविंग्स और जो भी फिक्स्ड डिपॉजिट्स थे सब कुछ उन्होंने कानूनी तौर पर नीरज के नाम पर कर दिया। लॉयर ने घबरा कर पूछा कि क्या वो वाकई अपना सब कुछ एक अनजान लड़के को देना चाहते हैं? तो सिद्धांत ने मुस्कुरा कर कहा, जो अपनों से बढ़कर हमारी सेवा करे वो अनजान कैसे हो सकता है? हमारे बच्चों के जाने के बाद अगर इस घर में फिर से रोशनी आई है तो वो सिर्फ नीरज की वजह से है। इसके कुछ ही महीनों के अंदर पहले सिद्धांत और फिर कल्याणी दोनों एक एक करके इस दुनिया को अलविदा कह गए। जाते वक्त दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि उन्हें पता था कि नीरज उनके साथ था। जब लॉयर ने कल्याणी के अंतिम संस्कार के बाद नीरज को बुलाया और वो वसीयत के कागजात उसके हाथ में सौंपे तो नीरज सन्न रह गया। कागजों के मुताबिक वो अब करोड़ों की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस का मालिक था। लॉयर को लगा कि नीरज बेहद खुश हो जाएगा, पर नीरज तो कागजात पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। वो एक बहुत ही ईमानदार और डिग्निटी वाला लड़का था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अंकल आंटी उसके नाम इतना सब कुछ कर जाएंगे। उसके मन में एक पल के लिए भी लालच नहीं आया। पर नीरज ने अब एक बड़ा फैसला लिया जिसे देखकर लॉयर भी हैरान हो गया। उसने सोचा ये नीरज के लिए उनका प्यार और आशीर्वाद है, इसलिए वो इस पैसे को अपनी ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसने सिद्धांत और कल्याणी के उस बड़े से गोमती नगर वाले घर को एक बहुत ही सुंदर ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम में बदल दिया। उस वृद्धाश्रम का नाम रखा कल्याणी सिद्धांत आशियाना। जिस दिन इस ओल्ड एज होम का इनॉग्रेशन था वो वकील साहब भी वहीं मौजूद थे और वो याद कर रहे थे सिद्धांत को, जिसने एक बार मुस्कुरा कर कहा था, जो अपनों से बढ़कर हमारी सेवा करे वो पराया कैसे हो सकता है। वकील साहब को पूरा एहसास हो चुका था कि खून के रिश्ते से बढ़कर दिलों के रिश्ते होते हैं। इस दिल के रिश्ते का प्यार बाकी है।

नीरज ने सिद्धांत और कल्याणी के गोमती नगर वाले घर को एक वृद्धाश्रम में कन्वर्ट कर दिया और वहां कुछ ऐसे बुजुर्ग भी थे जिन्हें या तो उनके बच्चों ने बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ दिया या फिर जिनके बच्चे सिद्धांत और कल्याणी की तरह ही किसी हादसे या बीमारी की वजह से दुनिया में नहीं रहे। नीरज खुद उस ओल्ड एज होम में रहता था। हर बुजुर्ग का ख्याल बिल्कुल अपने माता पिता की तरह रखता था। सबकी दवाइयां टाइम पर देना, सबके साथ शाम को टहलना, किसी के साथ बैठकर कैरम खेलना तो किसी को पुराने गाने सुनाना। वो घर जिसमें कभी सन्नाटा था, आज उस घर में फिर से हंसी, खिलखिलाहट और बातचीत की आवाजें गूंजने लगी थी। आज भी शाम को उस घर की बैल्कनी में बुजुर्ग बैठकर चाय पिया करते हैं। दीवार पर लगी सिद्धांत और कल्याणी की मुस्कुराती हुई तस्वीर पर एक दिया जल रहा होता है। नीरज हर रोज उस तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और सोचता है कि प्यार कभी नहीं मरता, वो बस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। हो सकता है कि ये कहानी कुछ लोगों को काल्पनिक लगे। नीरज जैसे लोग आज भी इस दुनिया में हैं और ऐसे ही ईमानदार लोगों की वजह से इंसानियत भी जिंदा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब और जहां भी आपको मौका मिले, किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के जरूर करें। ना जाने ये कौन सा प्यार कब आप तक कैसे पहुंच जाए। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि अगली कहानी के साथ जल्द मुलाकात होगी आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और हाँ, प्यार करना और प्यार बांटना जारी रखिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसे एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं।
3: है तो टेढ़ी मेढ़ी राय, उल्टी पुल्टी बातें, सीधी।
2: इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: वीर हो।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो।

का दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान टच जितने भी रूमर सुने तुमने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शर्मा में बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
3: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं,
2: काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
6: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
6: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
6: इरशाद,
2: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
6: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
6: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
6: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
6: अरे यार, वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
2: सुनो

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: गौरव महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया

0: लेती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।
2: उनके जीने का तरीका तुम्हें सिखाते हैं, हंस के देखो ना लतीफा तुम्हें सुनाते हैं।
3: Oh my God! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599. Click on the link now.
4: ठहरो जरा, रुको जरा। ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
5: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक टू सिनेमा का कैप्सूल। और अब बात उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी कुर्सी जमा ली है कि बाकी फिल्म्स को जगह ढूंढनी पड़ रही है। मिर्जापुर द मूवी अभी जो ऑडियंस के बीच स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फिल्म को थिएटर्स में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन क्रेज भाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और मजेदार बात यह है कि अब कॉम्पिटिशन भी सामने है। अक्षय कुमार और सैफ की हैवान रिलीज हो चुकी है, लेकिन मिर्जापुर अपनी पकड़ बनाए हुए है। डे 8 तक फिल्म ने इंडिया में करीब 158 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 225 करोड़ के पार बताया जा रहा है। मतलब कालीन भैया का रूल अभी खत्म नहीं हुआ है बॉक्स ऑफिस पर भी। लेकिन इसी बीच शोभा डे के रिव्यू ने भी खूब अटेंशन खींच लिया है। इन्होंने कहा है कि फिल्म देखते हुए वो करीब 15 मिनट के लिए सो गई थी। अब ऑडियंस बोल रही है मिर्जापुर और शोभा डे बोल रही है थोड़ा आराम करो। सिनेमा का कैप्सूल में एंटरटेनमेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक

0: खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
1: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

सामने हो। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपना दर्द बताया था। पहली बार मैं ठीक नहीं हूं ये सच सबको सुनाया था। और उस पल उसे समझ आया मदद मांगना हार नहीं, अंधेरों से लड़ने वालों की ये सबसे बड़ी पुकार सही।

0: रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।